सुप्रभात, ये आकाशवाणी का अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, ईस्वी सन 2026 के मई मास की 11 तारीख। इटूडू की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 15 सेकंड हो रहे हैं। इस मंगल धुन के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की प्रसारण सभा अब आरंभ करते हैं हम।

आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से

0: उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है FM 101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी अयोध्या। अब से लेकर 7:15 तक आइए सुने विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से, जिन्हें हम रिले करने जा रहे हैं।

आज का चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में

है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस भाग 185। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप

सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर। सुबह 10 का समय है पिटारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का। सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम दिन में 1 और दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा। थैलेसीमिया की बीमारी और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। रात 8 कार्यक्रम होगा हवा महल नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और रात 10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 185।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी।

राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे। शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओं आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला

0: की नौवीं एवं अंतिम कड़ी।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोगरकर पर। कल्पना जी, आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजुमदार जी, जो बहुत उत्तम गायक थे और उस्ताद रजब अली खान साहब के पट्ट शिष्य थे, तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी
1: जी।
2: संगीत विषय पर और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
2: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
2: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए। हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
2: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
2: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई। ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया। बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए
1: जी,
2: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
2: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला। हैदराबाद में थी मैं, मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
2: तो वहाँ उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियाँ, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई। कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए। तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
2: और फिर कुछ समय बाद, अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
2: कई बंदिशें मैंने तैयार की है, उसमें की आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे
1: जी। जी,
2: कुछ ठुमरियां तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
2: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं, इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ
1: जी। जी,
2: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं
1: जी।
2: या उसकी छाप उस गायकी पर है, तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है
1: जी।
2: तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं
1: जी। तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
2: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई है, चूंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी
1: जी।
2: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है
1: जी।
2: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है
1: जी। जी,
2: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियां हैं
1: जी,
2: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है, तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है
1: जी।
2: तो झूलत है कृष्ण मुरारी,
1: वाह,
2: राधे संग सखियां झुलावे,
1: क्या बात है।
2: तो रूपक ताल में ये मध्य लय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी और उसके पश्चात एक तराना
1: जी।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कल्पना जी, आपने इस श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थी गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनबणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुनीम जी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार SD बर्मन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: यहाँ बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 10:30 से। आकाशवाणी का ये अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। कार्यक्रम रूपरेखा में सुनिए 11:10 तक प्रसारित और अन्य केंद्रों से रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अमृत कलश कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। इसके बाद समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे 8:00 हिंदी में समाचार, और 8:15 से सुर संगम प्रोग्राम में आप एल्बम सॉन्ग सुनेंगे। 8:30 से प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें चर्चा का टॉपिक रहेगा बाहर जाने के पहले धूप से सुरक्षा उपाय जरूरी। इसके बाद डॉक्टर अखिलेश कुमार की वार्ता सुनिएगा वाणिज्य विषय के अध्ययन में रोजगार के खुलते अवसर। गीत के अलावा समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम होगा 9:00 से 9:30 से हम आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। इसके बाद 10:00 से प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा स्कूली बच्चों का उमंग। विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:30 से। 12:30 से दिन में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग होगा। फेसबुक श्रोताओं के लिए फरमाइशी फिल्म संगीत प्रोग्राम कुछ तुमने कहा दिन में 1:00 से लेकर 2:00 तक होगा, जिसके लिए आप 11:00 तक अपनी फरमाइश आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, जो कि कुछ तुमने कहा प्रोग्राम का पोस्टर लगा रहता है उसमें। दिन 2:00 गीतांजलि कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें सुनिएगा। समाचार दिल्ली से होंगे 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से ग्रामीण बहनों का अंगना कार्यक्रम होगा, जिसमें चर्चा होगी खरीदारी भी समझदारी भी। इसके बाद दीपा सिंह से वार्ता सुनिएगा हस्तशिल्प कला को समृद्ध करने में जनजातियों का योगदान। घरेलू सुझावों में सौंदर्य टिप्स आपको दिए जाएंगे और गीत भी सुनवाया जाएगा। युवावाणी में शाम 5:00 चर्चा का टॉपिक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसके बाद

करियर गाइडेंस सेगमेंट में, डिजिटल क्रांति कॉमर्स में करियर की नई उड़ान के बारे में प्रोफेसर मिर्जा शाह बताएंगे और रोजगार समाचार दिए जाएंगे। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:30 से। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी, जिनसे आप ऑस्टियोपोरोसिस कारण लक्षण और बचाव के बारे में समस्या का समाधान 7376804090 नंबर मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं। 7376804090 ये है आकाशवाणी अयोध्या का स्टूडियो फोन नंबर। शाम सुहानी प्रोग्राम में फिल्मी गाने सुनिए 6:10 से। गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम में लोकगीत आप सुनेंगे 6:30 से। 6:45 से कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा होगी सड़क सुरक्षा। इसके बाद डॉक्टर अशोक टाटंबरी से खेती किसानी पर कुछ कविताएं सुनिएगा और फिर बाजार भाव मौसम की जानकारी के अलावा लोकगीत भी सुनवाया जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे 7:30 से। 8:15 से गीत गुंजन कार्यक्रम होगा। 9:15 से महफिले गजल प्रोग्राम सुनवाया जाएगा रात में और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनेंगे। रात 10:30 तक ये प्रोग्राम होगा। इसके अलावा समाचार हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00, 6:05, 6:20 प्रादेशिक समाचार 7:20 पर होंगे और राष्ट्रीय समाचार दिल्ली से 8:45 से और फिर 9:00 अंग्रेजी में समाचार होंगे। 11:00 और 11:05 पर भी आप हिंदी अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। आकाशवाणी अयोध्या स्टूडियो वॉच में सुबह के 7:18:30 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद ठीक 7:20 से गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार हम लखनऊ से रिले करने जा रहे हैं। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है।

0: इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।

0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। आइए शुरू करते हैं आज का अमृत कलश कार्यक्रम।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति रचना सुनी।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह जब हम सभी उठते हैं

ईश्वर का नाम लेते हैं। रात को जब सोने लगते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, शुक्राना अदा करते हैं कि आज का दिन आपकी कृपा से बहुत अच्छा गुजरा। अगर कोई रेडियो से या आपसे यूं ही कहे कि पूजा अर्चना करने का समय सुबह का ही होता है, तो उसको बताएं कि ईश्वर की कृपा से जब सारा दिन अच्छा गुजरा तो हम रात में सोते वक्त ईश्वर को क्यों नहीं याद करें। हम सभी ईश्वर से मांगते भी बहुत कुछ हैं और वो सारी मन्नतों को पूरा भी करते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में प्रार्थना में बस यही शिकायत करते रहते हैं, रोते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, आप मेरा इतना इम्तिहान क्यों ले रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हम सबको जन्म से कितना दिया उसका धन्यवाद हम लोग कभी नहीं देते हैं, उसके शुक्रगुजार नहीं होते, थैंक्स गॉड नहीं कहते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, बस इतना समझ लें, जिस तरह से आप दुनियादारी में सबकी परीक्षा लेते रहते हैं कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, तो ईश्वर भी कभी कभी हम सबकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कलयुग में सच्चा इंसान और ईश्वर के करीब वही है जो ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करता कभी। बस पूरी आस्था और विश्वास श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करता रहता है। उसे ये नहीं कहता कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये कहते हुए भी वो भूल जाता है कि इस धरा पर उसको भेजने वाला ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ही है। यह भी सच है कि पूरे ब्रह्मांड में शक्ति केवल एक ही है। इस धरती पर हमने उस अलौकिक शक्ति को धर्म और संप्रदाय में बांट दिया। जब उस शक्ति ने हम सबको शारीरिक संरचना में एक जैसा बनाया है दुनिया में, तो उस शक्ति को चैलेंज करने वाले हम कौन होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और भी दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, वो सब ब्रह्मांड की एक शक्ति के ही अधीन हैं।

0: ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
5: और अब आइए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम अमृत कलश में सुने भाई गोपाल सिंह रागी और उनके साथियों से शब्द गुरुवाणी।

इस शब्द गुरुवाणी के बाद जिसे आपने भाई गोपाल सिंह रागी और उनके साथियों से सुना, अब एक नाद सुनिए यूसुफ आजाद कव्वाल की आवाज में।

0: गया।
1: यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों से अभी आपने ये नात सुनी। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति इस ब्रेक के बाद। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में माता की इस भेंट से कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं।

कि उस शक्ति की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, आपके दिन अच्छे गुजरे, आपके सपने पूरे हों, सेहतमंद रहें आप सब और हंसते गाते मुस्कुराते रहें। इस आशा के साथ ही आज का अमृत कलश कार्यक्रम समाप्त।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अमृत कलश आकाशवाणी अयोध्या एफएम से आप सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हिंदी में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा

0: में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का, विभागों का, अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश विदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल

0: ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकेन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112371 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से

0: व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का अयोध्या FM है, 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ हैं इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आइए इस प्रोग्राम में सुने कुछ एल्बम सॉन्ग। पहले अल्तमश फरीदी की आवाज में ये सॉन्ग सुनिए।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: और अब सुर संगम प्रोग्राम में आइए सुने जावेद अली की आवाज में ये एल्बम सॉन्ग।

0: अब आज का सुरसंगम प्रोग्राम खत्म होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या एफएम है 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए शुरू करते हैं प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके मीत अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में। आज की बात, ये बात अलग है कि इस बार मौसम की धूप छाओं का गेम चल रहा है। जहां तक दिन का टेम्परेचर 40 के भी पार 43 तक पहुंच रहा था, वो आजकल कुछ कम है। लेकिन जब हमारा टॉपिक तेज चिलचिलाती धूप से कैसे बचा जाए फिक्स किया गया है, तो उसके बारे में बताना एक आरजी की ड्यूटी तो है ही है। वैसे आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, देखना दिन में टेम्परेचर जो है कितना जाता है। लेकिन जब धूप से आपको बचना हो तो करना क्या होगा, तो धूप से बचाव के लिए छाँव में रहें, कैप लगा सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, सर पे गमछा बांध सकते हैं, धूप का चश्मा और फुल आस्तीन कपड़े आपको पहनना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तेज़ धूप में निकलने से बचें। अपने फ़ोन के मौसम ऐप में वेदर की इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखते रहें, क्योंकि इससे बिना सुरक्षा के धूप में रहने से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। जब धूप से बचना संभव ना हो तो उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े धूप से बचाव का सबसे अच्छा उपाय हैं। इसमें चौड़ी किनारी वाली टोपी, यूवी किरणों को रोकने वाले धूप के चश्मे और धूप से बचाव करने वाले वस्त्र पहनना शामिल है। गहरे रंग और घनी बुनाई वाले कपड़े बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं गर्मी में। कपड़ों, टोपी और धूप के चश्मे के अलावा आपको त्वचा के सभी खुले हिस्सों पर रोजाना सनस्क्रीन लगाना चाहिए।

0: हम धूप से बचाव की जरूरत का सही आकलन नहीं कर पाते। सबसे अच्छा यही है कि हर दिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, भले ही आपको लगे कि आप धूप में नहीं निकलेंगे। अगर आज के मौसम की बात करें तो मॉर्निंग में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दोपहर में मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस होने वाला है और शाम को 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा चिलचिलाती तेज़ धूप नहीं होगी। वैसे अब मौसम ने भी इंसानों से बहुत कुछ सीख लिया है। कब किस वक्त इंसानों की तरह मौसम करवट ले ले कहाँ नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले देखिए ना, जहाँ धूप निकली हुई थी सुबह सुबह, अचानक 2 घंटे में इतने काले घने बादल 2 घंटे में आ गए कि दिन के 11 बजे अंधेरा छा गया। मौसम चाहे जैसा भी हो, अपनी ओर से घर से निकलते वक्त पूरा इंतजाम करके ही निकलें। छतरी आपको धूप से तो बचाती है और बारिश से भी बचाती है, दो काम करती है छतरी अम्ब्रेला। इसके अलावा सिर ढक कर निकले, आँखों को बचाने के लिए चश्मा पहने और सबसे ज़रूरी पानी को आप ज़रूर लेकर चलें किसी बॉटल में और उसी का इस्तेमाल करें। और हाँ, खाली बॉटल इधर उधर सड़कों पर ना फेंकें, इसे डस्टबिन में ही फेंकें। वैसे आज के समाचारों में मौसम विज्ञानियों ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी से फिर से डिस्टर्बेंस उठने वाला है, तो 14 तारीख के आसपास फिर से आंधी तूफान और बारिश जी हाँ आ सकती है। और अब इस प्रोग्राम में आपको हम सुनवाने जा रहे हैं एक वार्ता सुनवाने जा रहे हैं वाणिज्य विषय के अध्ययन से रोजगार के खुलते अवसर। इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार।
1: आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक ही विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास के कारण अब विविध अध्ययन का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कराना भी है। वाणिज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, वित्त, लेखा और प्रबंधन से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण और विज्ञापन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। वाणिज्य का अध्ययन विद्यार्थियों को व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की समझ प्रदान करता है। इससे वे यह सीखते हैं कि व्यापार कैसे संचालित किया जाता है और आर्थिक संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए बैंकिंग क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माना जाता है। वाणिज्य के विद्यार्थी विभिन्न बैंकों में क्लर्क, प्रोविजनरी ऑफिसर, मैनेजर और अन्य पदों पर कार्य कर सकते हैं। वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए लेखा और वित्त का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में वे अकाउंटेंट, ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। इन पदों पर कार्य करने वाले लोग किसी संस्था या कंपनी के आय व्यय का सही हिसाब रखते हैं और आर्थिक योजना बनाने में मदद करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। वाणिज्य के विद्यार्थी प्रबंधन और कॉरपोरेट क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। वाणिज्य विषय का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी के लिए वित्त, लेखा, कर व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करना होता है। भारत में कई ऐसी सरकारी संस्थाएं और आयोग समय समय पर परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इनमें प्रमुख है SSC या आयोग, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कराता है। वाणिज्य के विद्यार्थी SSC की परीक्षा को पास करके लेखा अधिकारी, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट और प्रशासनिक पदों पर कार्य कर सकते हैं। UPSC

इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय राजस्व सेवा IRS और अन्य उच्च पदों पर चयनित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग में लेखा विभाग, रेलवे, डाक विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वाणिज्य से संबंधित कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि विद्यार्थी सही दिशा में मेहनत करे और प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करे तो वे सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकते हैं और देश की सेवा करने का अवसर पा सकते हैं। वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए बीमा और शेयर बाजार में भी वे बीमा कंपनियों में अधिकारी या एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वे शेयर बाजार में निवेश सलाहकार या स्टॉक मार्केट विश्लेषक के रूप में भी काम कर सकते हैं। जब लोग अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करते हैं तो वे खुद ही रोजगार प्राप्त नहीं करते बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए कई प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे रिटेल व्यापार, ऑनलाइन व्यवसाय, लेखा और टैक्स सलाहकार सेवा, बीमा और निवेश सलाह, मार्केटिंग और विज्ञापन एजेंसी। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन व्यापार के अवसर भी बहुत बढ़ गए हैं। विद्यार्थी इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से अपने उत्पाद और सेवाएं आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक सफल उद्यमी बनने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे मेहनत और लगन, जोखिम उठाने की क्षमता, अच्छा प्रबंध कौशल, सही निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य और सकारात्मक सोच। ये गुण किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करते हैं। भारत सरकार भी युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है। कई योजनाओं के माध्यम से नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक और प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को ऋण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वाणिज्य का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और शोध का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक माना जाता है। इस क्षेत्र में विद्यार्थी अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके नई पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर शोध करके समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले वाणिज्य के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक बन सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी वाणिज्य विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वह विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य कर सकता है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों को लेखा, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और प्रबंध जैसी विषयों का ज्ञान देना होता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्यापक बनने के लिए कुछ विशेष परीक्षाएं भी पास करनी होती है। विश्वविद्यालय के स्तर पर अध्ययन और अध्यापन के लिए UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। इस परीक्षा को पास करके विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने योग्य बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक बड़ा लाभ यह भी है कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और विद्यार्थी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता करता है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में समय समय पर नई समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। शोधकर्ता इन समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान खोजने का प्रयास करता है। वाणिज्य के क्षेत्र में शोध करने वाले विद्यार्थी PhD की पढ़ाई करके और PhD करने के बाद वे किसी विश्वविद्यालय में शोधकर्ता या प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। शोध के माध्यम से व्यापार और उद्योग को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके खोजे जाते हैं। इससे कंपनियों को अपनी कार्य प्रणाली सुधारने में मदद मिलती है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। शिक्षा और शोध का क्षेत्र वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए

0: बहुत अच्छा कैरियर विकल्प है। इस क्षेत्र में कार्य करके वे न केवल अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं बल्कि समाज के विकास और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वाणिज्य का अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अनेक रोजगार प्रदान करता है। बैंकिंग, लेखा प्रबंधन, सरकारी सेवाएं, बीमा, शेयर बाजार और उद्यमिता जैसी कई क्षेत्रों में वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं।
1: अभी आपने ये वार्ता सुनी, वाणिज्य के क्षेत्र में उसके अध्ययन से किस तरह से हम रोजगार में जा सकते हैं, आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अखिलेश कुमार। और अब आज 11 मई है और महत्वपूर्ण घटनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। आज के दिन की भी आइए एक नजर डालते हैं। 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई। 1940 में आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे हम सभी बीबीसी के नाम से भी जानते हैं, उसने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी आज ही के दिन 11 मई को। 11 मई 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 1962 में आज ही के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था, जब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची आस्था को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया। और 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और बातें।
2: आपकी संदेश,
3: संदेश से आते हैं
2: आपके गीत,
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911। क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आ जाइए प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में। अभी वक्त बचा हुआ है इसमें, और कुछ बातें करेंगे बॉलीवुड की और आपको गाने भी सुनाएंगे। पहले बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। राजा शिवाजी रिलीज के 8वें दिन भी धूम मचा रही है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म राजा शिवाजी को लेकर चर्चा है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई भी कर रही है। ये पहली मराठी फिल्म है साथियों जो कि इतनी शानदार कमाई वर्ल्ड वाइड कर रही है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी इसको पसंद किया जा रहा है। रितेश देशमुख कई सालों से इस प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे थे। धुरंधर 2 साल 2026 में शायद ही कोई ऐसी हिंदी फिल्म रिलीज होगी जो इस फिल्म की दीवानगी को पीछे छोड़कर इतनी कमाई कर सके। इस बीच कई फिल्में आईं और चली गईं, लेकिन ये फिल्म अभी भी देखी जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई रिलीज आई एम नॉट एन एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत कर दी है। छोटे बजट में बने इस फिल्म की ओपनिंग बताती है कि इस प्रोजेक्ट को मजबूत शुरुआत मिली है, और साथ ही ये भी दिखाता है कि दर्शकों में कंटेंट

बेस्ड सिनेमा के लिए पसंद लगातार उनकी बढ़ती जा रही है। और जैसी उम्मीद थी, अक्षय कुमार, तब्बू और वामिका गब्बी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत भंगला, वो भी कमाल कर रही है। कलेक्शन के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। जी हाँ, ये कमाई सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी हुई है भूत बंगला फिल्म की। तो आइए अक्षय कुमार की फिल्म का गाना भी हो जाए फिर इस बात पर।

आज के दिन जहाँ किस सिनेस्टार का बर्थडे है उसकी भी बात हो जाए, अगर आपका भी बर्थडे है तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए इन हस्तियों के साथ। अदा शर्मा नाम सुना है कभी आपने? चलिए बताते हैं आपको। एक ऐसी भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अदा ने बॉलीवुड में फिल्म 1920 में रजनीश दुग्गल के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। 1920 ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1920 के बाद हार्ट अटैक और राणा विक्रम अदा शर्मा की लोकप्रिय फिल्में रहीं हिंदी की। उन्होंने फिर और सुब्रमण्यम फॉर सेल फिल्मों में भी विशेष भूमिका निभाई। 2023 में उन्हें ऑडियंस और जूरी से तारीफ मिली, साथ ही वो विवादों में भी घिर गईं जब उन्होंने ट्विटर पर अपनी फिल्म द केरल स्टोरी को एक सच्ची कहानी बताकर पोस्ट किया, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया। तो आज अदा शर्मा अपना 34वां बर्थडे मना रही हैं। तो कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी का जन्म भी आज ही के दिन 11 मई 1970 को हुआ। 1991 से लेकर 1994 तक बॉलीवुड फिल्मों में पूजा बेदी ने काम किया, अपनी एक्टिंग दिखाई। 1991 में फिल्म विश्वकन्या से फिल्म जगत में बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया। आमिर खान के साथ अपनी अब तक की सबसे लोकप्रिय फिल्म जो जीता वही सिकंदर, जो 1992 में आई, उसमें

अभिनय किया और लुटेरे जो 1993 में आई, इस तरह से बहुत सी फिल्मों में पूजा बेदी नजर आई। लेकिन आज ये गाना यहाँ चलने वाला है आधा शर्मा का, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और उसको उन्होंने द केरला स्टोरी में भी देखा होगा। वैसे केरल स्टोरी 2 भी आ चुकी है, जिस तरह से धुरंधर 2 आ चुकी है।

समाचार पत्रों से अयोध्या मंडल की लोकल खबरों की हेडलाइंस। भरत कुंड में स्थित धार्मिक आस्था केंद्र नंदीग्राम को मंदिर और घाटों का सौंदर्यीकरण वहां पर होने जा रहा है, जिसमें लाइटिंग, MFI थिएटर और पर्यटन की सुविधाएं दी जाएंगी। अयोध्या थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक आईडी हैक करके की गई साइबर ठगी के मामले में पीड़ित को 42,000 रुपए वापस करवा दिए हैं। आमजन से पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर रिस्पांस ना दें, उसे बात ना करें, न ही संदेश का कोई जवाब दें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दें। नंबर हेल्पलाइन का एक बार फिर सुन ले, 1930 है, 1930।

अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय अयोध्या में लैब का शुभारंभ हो चुका है। ये लैब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के सहयोग से संचालित की जाएगी। कंजर्वेशन लैब्स में सुरक्षित रहेंगी धरोहरें। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 125वें स्थापना वर्ष के अवसर पर जैन समाज अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में उत्सव मनाएगा। आगामी 22 अक्टूबर को समिति की स्थापना और तीर्थ सेवा के 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और रुदौली की दिव्यांग छात्रा शिवानी राजपूत ने पैरों से लिखकर इंटरमीडिएट परीक्षा 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। शिवानी सिविल सेवा में जाने का उनका सपना है।

0: तो ये थी आपके अयोध्या मंडल की लोकल खबरें। इसके साथ ही बस आज का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम समाप्त करने की अपने मीत अमरजीत को अब आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहेंगे हम आपके साथ क्योंकि अभी आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम भी है 9 बजे और फोन इन प्रोग्राम भी है 9:30 बजे। तो आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन आपको प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में। तो बस अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।
1: प्रणाम अयोध्या।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। समय मिलाइए सुबह के 8:59:45 हो रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपके संदेश, आपके गीत प्रोग्राम में अपनी पसंद के गाने।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
4: तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी का इस प्रोग्राम में भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इंतज़ार में हैं कि कब हमारी फरमाइश का गाना चलेगा, हमारे नाम बोले जाएंगे। तो बस आप तैयार रहिए, आप सबका इस प्रोग्राम में भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। पहला गाना हम आपको विजय पथ फिल्म से सुनवाएंगे, जिसे पसंद किया है आप सबने। राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। वीरमगाम सिटी से अजीता मेहरा और सुनीता मेहरा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र हरियाणा से दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से फरमाइश मिल रही है किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया, सुमन और बेटी अंशु की ओर से। गंगानगर शिकोहाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम के साथ रवि और आर्यन। तो गंगानगर शिकोहाबाद से बनवारी लाल जी ने बहुत अच्छी बात भी लिखी है अपने मैसेज में। कहते हैं कि सड़क कभी भी सीधी नहीं होती है, कुछ दूर जाने के बाद मोड़ जरूर आता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बस हिम्मत और धैर्य बनाए रखें, सुखद मोड़ जरूर आएगा। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, जिंदगी में

अगर बुरे दिन आते भी हैं, दुख आते भी हैं, गम आते भी हैं, तो उसके बाद खुशियाँ भी आती हैं, क्योंकि सूरज जब डूबता है तो नया सूरज भी उगता है ना हर दिन। तो बस वैसे ही समझिए आप। शुक्रिया जी बहुत बहुत। बनवारी लाल जी प्रोग्राम सुन रहे होंगे इस समय आप। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद ने भी विजय पथ का गाना पसंद किया है। सुशील यादव कर्नलगंज घोड़ा से फरमाइश कर रहे हैं। मोती नगर नई दिल्ली से कविता और गौरव अरोड़ा हैं। गांव कादीपुर जिला सुल्तानपुर से शमा परवीन, आयतल फातिमा और अफलाक फातिमा। बारी मोहल्ला कुर्सत उन्नाव से मुजम्मिल अहमद। तो लीजिए सुनिए आप सब अपनी पसंद का गाना साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में विजय पथ।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम में अब किसका गाना जी हाँ सुनवाने जा रहे हैं, आइए उनके भी नाम बताते हैं। ये गाना है एक रिश्ता फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गाने के बोल भी इन्होंने लिखे हैं। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, एक दिल है मेरा दिल है। इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, कृष्ण विहार कॉलोनी उसरू रायबरेली रोड बाईपास श्री अयोध्या धाम से, अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची, फूलकली, ऋषि, अर्चना वैष्णवी और शशि सिंह कह रहे हैं कि अनूप कुमार कई बार फरमाइश को शामिल नहीं किया गया, आज फिर से भेज रहे हैं आपके पास। अगर शामिल नहीं करना है तो इसी पर थोड़ी सी रिप्लाई दे दीजिएगा, फिर एकदम से मैसेज भेजने हम बंद कर देंगे। भाई आप ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको अनूप जी। ये आकाशवाणी अयोध्या, जो आकाशवाणी फैजाबाद था 1993 में, अभी 2-3 साल से यह अयोध्या हुआ है 2022 के बाद। आप इतने बरसों से इस केंद्र से जुड़े हुए हैं, ऐसी बातें लिखकर हम लोग का दिल मत तोड़िए, ठीक है ना। हर एंकर अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है वो किसी की कॉल भी ना ड्रॉप हो उससे, और फरमाइश भी सबकी पूरी हो। हम सभी पूरी टीम कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे। मलियान सरधना मेरठ से ये फरमाइश हमारे पास आई है। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन की ओर से। द्वारिका दिल्ली से अमूल आहूजा, रहमी, स्नेहा आहूजा, उमंग, तरंग आहूजा और बेबी लवीना खट्टर। चांदनी मौर्या, निहारिका और तनुप्रिया मौर्या ने अपने मम्मी पापा के साथ फरमाइश भेजी है, लेकिन अपनी जगह का नाम लिखना ये भूल गए हैं। तो भाई चांदनी मौर्या, अगली बार जब आप फरमाइश करेंगे असाग में, तो आप कहाँ पर रहकर ये प्रोग्राम सुन रही हैं, अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा। सिविल लाइन पन्ना, डिस्ट्रिक्ट पन्ना से, मध्य प्रदेश में है ये। यहाँ से नूतन द्विवेदी, सूर्य प्रकाश, प्रज्वल द्विवेदी और सात्विक द्विवेदी। आदर्श नगर मालोट पंजाब से ये रिक्वेस्ट मिल रही है गाने के लिए। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ और सानिया शर्मा। देवकाली अहमदपुर बाजार से बाबू अंसारी ने भी इस गाने को पसंद किया है। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी केंद्र पर ये पहली बार मैसेज कर रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप इसी तरह से मैसेज करते रहेंगे तो आपके गाने हम लोग सुनवाते रहेंगे। बागपत से ये फरमाइश मिली है ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया की, तो लीजिए आप सब सुनिए अनूप कुमार की फरमाइश पर, जो कि रायबरेली रोड अयोध्या में रहते हैं, उनकी पसंद का ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: तो एक बार अनूप जी को फिर से हम शुक्रिया कहना चाहते हैं कि इतना बेहतरीन गाना उन्होंने पसंद किया, मेरा ही दिल निकाल के रख दिया।
1: यह है अयोध्या 101.9।
2: रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा।
1: आपकी चॉइस, एजे अमरजीत आपके पास।

0: तो बस इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को।
1: और अब आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम में दीवाना फिल्म का गीत बजने वाला है जो 1992 में

आई थी, पायलिया वाला गाना है ये, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज एक बार फिर से। पसंद किया है गाने को आप सबने। जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु, मुकेश और जगताप, भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल से हरियाणा में है ये, विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान, ग्राम बंजरिया पोस्ट झिलाही मनकापुर गोंडा से संदीप भारती, आशीष भारती, सिग्गी घोचू भारती, आयुष अंशिका भारती, अंशु जमुना गुड़िया आरती, विजय अजय भारती और नीवर प्रसाद भारती। तो संदीप भारती जी को भी मैं भूला नहीं हूँ। आप ये प्रोग्राम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है आज कि आपने फरमाइश भी भेजी, शुक्रिया जी। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा और अनामिका शर्मा, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, सना शमा, हिना शकीला, रजिया सुल्ताना, जस्मीन अख्तर, सूरज और मोहम्मद जावेद अंसारी, मोहाली पंजाब से जो चंडीगढ़ के पास है, बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, और इसी गाने को सुनने जा रहे हमारे ये श्रोता भी, धारा रोड ककरही बाजार अयोध्या से इंद्र कुमार चौरसिया, अभिजीत चौरसिया और विनायक रुद्राक्ष, खुर्द महल अयोध्या से अजहर हुसैन, इमरान हुसैन, जोहद अब्बास और हबीब हैदर, नियामा कैंट रोड से गजेंद्र मौर्य चाय वाले, पल्लवी मौर्य, अभिषेक, अभय कुमार, पाटेश्वरी विहार कॉलोनी अयोध्या से मुकेश मौर्य, दीपाली मौर्य, गुड़िया शेफाली खुशी और अनामिका मौर्य, ग्राम आसिफ बाग चौराहा रेलवे गुमटी परिक्रमा मार्ग अयोध्या से श्याम लाल चाय वाले, संतोष शर्मा, राम सुरेश, राम केवल यादव, रामचंद्र, रामधनी, मनीष यादव, विजय यादव और इनके बहुत सारे दोस्त। तो लीजिए सुनिए आप सब अपनी फरमाइश का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना सिर्फ तुम फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, अपने इन दोस्तों की पसंद पर। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में भाई इस प्लेबैक सिंगिंग जोड़ी की आज हैट्रिक लग गई। तीसरा गाना है ये इनकी आवाज में। गाने को पसंद कर रहे हैं शशि भूषण कुंवर, रहनमाल बलंगीर, उड़ीसा से। ऐसा कहा जाता है कि बलंगीर का नाम बलरामगढ़ से लिया गया है, जिसे बलंगीर भी कहते हैं, जो एक किला है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बलंगीर के 19वें राजा और संभलपुर साम्राज्य के संस्थापक बलराम देव ने यहाँ करवाई थी। बलंगीर जिला अपने विशिष्ट हथकरघा वस्त्रों, विशेष रूप से संभलपुरी साड़ियों और विभिन्न हस्तशिल्पों के लिए जाना जाता है। इस शहर में विभिन्न धर्मों से संबंधित आश्रम, झीलें, महल, पार्क, मंदिर और तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। शालाश्री महल, जहां कभी बलंगीर का शाही परिवार निवास करता था, ओडिशा के सबसे बढ़िया महलों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ का रायपुर निकटतम हवाई अड्डा है यहां पर। राज्य का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में भी स्थित है। भुवनेश्वर से बलंगीर लगभग 321 किलोमीटर दूर है। और इसी गाने में इन्हीं सॉन्ग के साथ कुछ दोस्तों को भी शामिल कर रहे हैं। ये हैं अयोध्या से एकलव, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से जया रावत, अजिता रावत, आशीष रावत, अभय रावत, अकुल रावत और उनके मम्मी पापा, मौशीवाला अयोध्या से श्वेता यादव, लवी यादव और इनका पूरा यदुवंशी परिवार, करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सेमू एकम, दमन और अभिजोत। तो लीजिए सुनिए आप सब भी अपनी पसंद का ये गाना।

तो बस इसी के साथ आज का ये आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम समाप्त करने की अपने मित अमरजीत को इजाजत दीजिए। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या FM को 101.9 पर। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

0: आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम आप आकाशवाणी अयोध्या FM से सुन रहे थे। समय मिलाइए, सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब यहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने एफएम 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
1: अपने आने का सबब क्या बताएं आपको, अपने आने का सबब क्या बताएं आपको, बैठे बैठे आ गई याद आपकी, बैठे बैठे आ गई याद आपकी, आपके दिल ने हमें आवाज दी हम आ गए। जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अपने मित अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और देखिए हमारे पास कॉल किसकी लग गई है यहाँ पर। जी आइए प्रोग्राम में, नाम बताइए अपना, अपना नाम बताइए, कहाँ से आपने कॉल लगाई है इस प्रोग्राम में।
2: हेलो
1: जी अपना नाम बताइए। हेलो मैं सुन रहा हूँ आपको।
2: सर अफसाना अंजुम बोल रहे हैं।
1: अफसाना अंजुम कहाँ पर ये प्रोग्राम सुन रही है इस वक्त।
2: वजीरगंज जिला छावनी से बोल रहे हैं।
1: अच्छा जी और प्रोग्राम अच्छा लगता है ना ये वाला।
2: जी जी सर हमको बहुत अच्छा लगता है।
1: अब तो सुबह भी आ रहा है, दोपहर में भी आ रहा है और शाम को भी आ रहा है। कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं होती सवेरे, आप खाना ना बनाने में आपको दिक्कत तो नहीं होती।
2: नहीं नहीं सर हम खाना बनाते ही नहीं, मेरी भाभी खाना बनाती है।
1: अरे वाह उनको पूरा जिम्मा दे रखा है। अच्छा उनको जिम्मा दे रखा है, आप उनकी मदद नहीं करती हैं।
2: मदद करते हैं उनकी, उनको जिम्मा दे दिया है।
1: अच्छा ठीक है तो बढ़िया है।

0: क्योंकि सुबह का टाइम बड़ा बिजी टाइम होता है ना, बच्चों को स्कूल भी भेजना, खुद भी तैयार होना।
1: भेजते हैं बच्चे स्कूल गए सब।
0: अच्छा अच्छा, तो आज अफसाना को गाना कौन सा सुनवा दें?
1: सर हमको गाना सुनना है दाता तुमका, मेरी मम्मी का है फेवरेट गाना। जी
0: कौन सा गाने बोल बताएंगी या कोई भी गाना चला दे?
1: सर वो अरे कौन सा
0: एक बताइए,
1: बाबुल वाला जो है नहीं गाना।
0: अच्छा अच्छा, विदाई का सॉन्ग है ये, ठीक है।
1: जी जी विदाई का।
0: तो कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, वजीरगंज में आपका गाना पहुंच रहा है।
1: जी जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: और अब मेरे पास पंजाब से कॉल आ गई है। आइए उनका भी इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं जी बताइए अपना नाम।
1: ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ, ਹਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ।
0: ਆਪਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
1: ਸਰ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਯੋਗਿਆ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਔਰ ਆਪਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ
0: जी।
1: राम का जन्म भूमि है हमारे को, नागिन फिल्म का सर कोई भी
0: बिल्कुल सुना दीजिए, सुनवाएंगे। मेरी भी बातें कुछ सुन लीजिए, मेरी भी बातें कुछ सुन लीजिए
1: जी सर।
0: मोहम्मद अनवर अंसारी जी, आप ये बताइए कि वहाँ लुधियाना के पास ये मलेरकोट में आप रहते हैं, कितने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, बचपन से?
1: हाँ जी सर, बचपन से रह रहे, बहुत साल हो गए। हमारे दादा का भी 1947 से जहाँ का जन्म स्थान है हमारे लुधियाना के, जहाँ पड़ता है लुधियाना गाँव पड़ता है, वहाँ के शुरू से यहाँ के जन्म स्थान है, हमारे बाप का भी, मेरी माँ का भी, जहाँ इसलिए रहने वाले सर,
0: इसलिए आप पंजाबी इतनी बढ़िया बोल रहे हैं है ना। चलो थानू अज मैं
1: सर साड़ी शान ते बाण आ जांदा, पंजाबियां दी शान वखरी।
0: अच्छा एक गल दसो, नागिन विचों केड़ा गाना तुहानू सुनवाइए?
1: हां जी,
0: नागिन फिल्म विचों केड़ा गाना तुहानू सुनवाइए?
1: सानू गाना सुना दो जी, जेड़ी मर्जी पसंद होवे, तुहाडी पसंद होगी फिल्म, साड़ी पसंद होगी, नागिन फिल्म दा केड़ा मर्जी गीत सुना दो जी।
0: चलिए एक गाना तुहानू आपको सुनवा रहे हैं, सबको भी सुनवा रहे हैं, नागिन से तेरे संग प्यार मैं नहीं छोड़ना, ठीक है ना?
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा
0: जी, शुक्रिया।

0: जी हाँ, आधे घंटे का ही सफर है आज ये, क्योंकि मॉर्निंग में आधे घंटे का ही रहता है और दिन में भी आधे घंटे का रहता है, केवल रात में ही एक घंटे का ही प्रोग्राम होता है मंगलवार को छोड़कर। और अब मेरे पास जी हाँ कोई और भी पहुंच गया है। जी बताइए अपना नाम वहां से।
1: हाँ सर, अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रामनाथ, देवकाली रोड, अयोध्या।
0: तो और बढ़िया है सब हाल चाल?
1: अरे सर बहुत बढ़िया है, आज आपसे सुबह सुबह मुलाकात हो गई सर, बहुत और खुशी की बात है।
0: बिल्कुल, हमें भी खुशी हो रही है। और
1: दुकान पर बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सर।
0: जब ये प्रोग्राम ही आपका है, स्टेशन भी आपका है, तो हम लोग मना करने वाले कोई नहीं होते।
1: हाँ
0: जी, तो ये
1: और आप सब आप लोग कहिए तो सुबह सुबह सुबह कोई इनका के आप अच्छी अच्छी बात कराइएगा सर, बहुत अच्छी बात है।
0: वो तो है, देखिए एक प्रोग्राम बातें आसपास की होता था चार दिन, वो भी अब कम हो गया, दो दिन केवल हो रहा है। तो अनाउंसर के हिस्से में जो है अब फिल्म संगीत का ना सुबह प्रोग्राम है और ना दोपहर में कोई प्रोग्राम है।
1: सुबह वाले प्रोग्राम में आप पहली बार आ जाए सर।
0: जी जी, हम मॉर्निंग ड्यूटी में बहुत कम आते हैं, ज्यादातर रात की ड्यूटी करते हैं। चलिए तो कभी कभी कभी मुझे मॉर्निंग के जो श्रोता है ना सुनने वाले, उनसे भी मिलने का दिल करता है।
1: खुशी हो रही क्या बताएं हम सर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके।
0: चलिए, और आज गाना कर्तव्य से कौन सा आपने बताया था, दुनिया जाए भाड़ में?
1: दुनिया जाए भाड़ में,
0: मिल गया मिल गया। तो आपके भरोसे हम भी ये गाना सुनेंगे आज।
1: ये गाना सर मैं अपने एक मित्र को डेडिकेट करना चाहता हूँ, बसंत कुमार सोनकर के नाम।
0: कहाँ, वही रहते हैं आपके आसपास?
1: जी, आपके बाप के बगल में रहते हैं सर।
0: अच्छा,
1: आपके रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल।
0: अच्छा अच्छा, इधर बेगमगंज गढ़िया में
1: ताराजीपुरम है, उसी में रहते हैं सर।
0: अच्छा जी, चलिए शुक्रिया जी, बाकी लोगों को भी आने दीजिए, आपका शुक्रिया जी सोनकर जी, अर्जुन जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: रब जी कौन आ गया मेरे पास बात करने के लिए, अपना गाना सुनने के लिए? जी बताइए अपना नाम, कहाँ पर सुन रहे हैं यह प्रोग्राम?
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सर हरियाणा में जिला करनाल है, उसके पास है रावर गांव, तो मैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा बात कर रहा हूँ सर।
0: तो ये बताइए करनाल डिस्ट्रिक्ट से आपका गाँव कितने किलोमीटर दूर है?
1: ये मात्र 3 किलोमीटर दूर है।
0: बस बिल्कुल पास में ही है फिर तो।
1: हाँ, वैसे तो जो करनाल है हमारे गांव से लगभग 400 मीटर दूर तक विकसित हो गया है।
0: बस आप शहर में ही रह रहे हैं फिर तो, है ना?
1: तो बस एक हिसाब से शहर में ही है सर।
0: तो दिल्ली के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं अम्बाले की ओर, तो पानीपत से भी बड़ा है करनाल, बहुत बड़ा है। मैं वहाँ गया हूँ कई बार, मेरे रिलेटिव वहाँ रहते हैं।
1: असल में जब स्टार्टिंग में हरियाणा बना था ना सर,
0: जी जी,
1: तो तब ये पानीपत, कुलक्षेत्र, ये सब मिला के करनाल जिला ही था, उसके बाद ही बाकी जिले।
0: जी जी जी जी, पंजाब में था सब पूरा, बाद में हरियाणा बना। तो
1: बाद में हरियाणा बना।
0: तो आप करते क्या है वहाँ पर?
1: सर मैं एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ एक कंपनी में।
0: अच्छा, ज्ञान भूषण जी, और रेडियो सुनने का शौक आप में कितने साल में आ गया था, कितने बड़े थे तब आप?
1: सर मैं 1984 से रेडियो सुन रहा हूँ सर।
0: अच्छा, अब तो देखिए आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं 8 जून को, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो ये सब आप लोगों की सुनने की वजह से हम लोग इतनी बड़ी मंजिल हम लोगों ने तय कर ली 90 साल की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। और गाना किस फिल्म का आपने बताया था? बाबू का। तो बाबू का गाना मुझे मिल गया।
1: तो सर मैं एक बात कहूंगा, मैं ना सिर्फ अयोध्या
0: जी
1: बस दो ढाई महीने से सुनना शुरू हुआ है, और मुझे इतने बढ़िया प्रोग्राम लगते है ना, ये सुबह जो अमृत कलश प्रोग्राम आता है ना 7:30 बजे,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वो मैं और मेरी मिसेज जरूर रोजाना सुनते हैं, और बाकी भी प्रोग्राम हमारे बड़े अजीज हैं।
0: तो आज भी आपने सुना होगा सुबह 7:30 बजे?
1: हाँ जी बिल्कुल सुना था, बहुत अच्छे। और आपने जो आज हजवाड़ा भजन सुनाया ना, वो बहुत अच्छा था
0: जी, नाथ सुनवाई थी। और मैंने ईश्वर की जो बात की ना, ब्रह्मांड में पूरी एक ही शक्ति है, वो मैंने आज अपने शब्दों से खुद लिखा था वो सारी चीज।
1: हाँ जी, माता की भेंट और गुरबाणी भी सुनी, बड़ा आनंद आता है वो प्रोग्राम तो।
0: जी हाँ जी हाँ। तो चलिए आपका गाना
1: सर मैं ना जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, मेरे साथ 3 दोस्त बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल, उनका नाम ले लीजिए।
1: नाम ले सकता हूँ?
0: बिल्कुल ले सकते, लीजिए।
1: सर एक है चंद्र वाइंडर, ये मोटरे वाइंडिंग करते हैं, एक चंद्र वाइंडर, एक सौरभ वाइंडर और एक कृष्ण वाइंडर, ये भी मेरे साथ ये गीत सुनेंगे बाबू फिल्म का, ए हवा मेरे संग संग चल।
0: बहुत ही बेहतरीन गाना आपने चुना है लता मंगेशकर की आवाज में, और ज्ञान भूषण शर्मा जी करनाल में आपका गाना पहुंच गया।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: देखिए गाने में रुक आया तो गाना ही रुक गया, आप भी कहेंगे कैसी जगह पे मैंने गाना काट दिया, चलिए माफ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक श्रोता भी मेरे पास आ चुकी है, जी नाम बताइए अपना।
1: जी साधना सोनी,
0: नवाबगंज गोंडा से बोल रहे हैं। साधना सोनी जी, नवाबगंज गोंडा में प्रोग्राम अच्छा मिल रहा है आपको?
1: अरे बहुत अच्छा लगता है, आप जब आज हम सुबह से हम रोटी बना रहे थे और सोचे पहले आपको फोन मिला दे, आपसे तो कभी बात ही नहीं हुआ, एक बार मैं इनसे बात हुआ है, आपसे तो पहली बार हुआ है।
0: तो रोटी कोई जल तो नहीं गई है?
1: अरे सर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो गया था।
0: ये बात है, अच्छा हाँ गोल रोटी देखिए बनाने की भी एक कला है।
1: हाँ
0: और गोल रोटी मैं भी बहुत बढ़िया बेल के और फुला भी लेता हूँ तवे पर। तो ये बताइए गाना किस फिल्म का सुनवाएं आपको साधना जी?
1: जानवर
0: फिल्म का गाना।
1: और आप इतना अच्छा करते हैं कि आपका आवाज सुन के हम लोग दौड़े भागे चले आते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: और जानते हैं सर, जब हमारी शादी हुई थी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिमांड यही की थी कि मुझे रेडियो चाहिए, और मैं रेडियो ले ही, उस वक्त मतलब आज 15 साल हो गया, मेरी शादी को 15 साल हो गया है और 15 साल से मैं रेडियो सुनती हूँ।
0: और अब तो हम लोग मोबाइल में भी आ गए, मोबाइल में भी एफएम रेडियो सब आ रहे हैं,
1: लेकिन रेडियो में जो आवाज जो मतलब मजा आता है वो मोबाइल में।
0: हाँ ये बात तो है, रेडियो सामने रख दीजिए और काम भी करते रहिए और गाने भी सुनते रहिए।
1: सुबह 5 बजे मेरा 5 बजे पर्सन में शुरू रहता है रेडियो, रात को ही बंद होता है।
0: और आकाशवाणी अयोध्या को कितने सालों से आप सुन रही है? पहले फैजाबाद था ये?
1: हाँ पहले फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है।
0: तो गाना आपका मुझे मिल गया है, कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: ओके सर
0: जी,
1: थैंक यू।
0: सुनिए गाना।
1: सर आपके वहाँ आएंगे कि हम मिलने?
0: बिल्कुल आइएगा, मंडे टू फ्राइडे।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: जी हाँ, माँ को कभी कोई नहीं भूल सकता है। मेरी भी माँ 1992 में ईश्वर के पास चली गई। आकाशवाणी में आने से पहले वो ईश्वर के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी उनकी बराबर याद आती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब हेलो अयोध्या में आइए, देखें कौन दोस्त यहाँ पहुँच चुके हैं। जी बताइए अपना नाम।
5: जी सर, सत्यम वर्मा।
0: सत्यम वर्मा जी कहाँ पर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम?
5: अम्बेडकर नगर, दरियापुर बंजारा, अम्बेडकर नगर से सर।
0: जी जी, अम्बेडकर नगर में भी बहुत सुना जाता है आकाशवाणी, अयोध्या फैजाबाद भी सुना जाता था। और आप रेडियो पर सुनते हैं, ट्रांजिस्टर पर सुनते हैं कि मोबाइल में सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं?
5: नहीं सर, रेडियो पे भी सुनते हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं सर।
0: तो ट्रांजिस्टर में आपका बढ़िया पकड़ता है ना?
5: जी जी जी।
0: चलिए, तो आज कैसा मन हो गया कि यहाँ कॉल लगाई जाए, गाना सुना जाए?
5: नहीं सर, कई बार कॉल लगाने लगी भी है।
0: अच्छा, पहले बात हो चुकी है?
5: हाँ मैडम, लोगों से बात हुई है।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज गाना कौन सा सुनने का मन कर रहा है आपका?
5: दोस्ती फिल्म का सर।
0: चलिए,
5: जाने वाले मुड़ के देख मुझे।
0: वैसे जाने वाले मुड़कर आजकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बताइए। सत्यम, आजकल जाने वाले मुड़कर देखते हैं कि नहीं देखते, बस चले जाते हैं सीधे?
5: कुछ लोग देखते हैं सर, कुछ लोग नहीं देखते हैं।
0: यही बात मैं पूछने वाला था आपसे। देखते जरूर हैं। जी जी, दुनिया बदल चुकी है बहुत। गाना सुनिए, कॉल के लिए शुक्रिया आपका। जी, जी।

0: करो।
1: और अब मेरे साथ जी कौन आ गया, नाम बताइए अपना।
0: एक पल का एहसास बनकर आते हो तुम, एक पल का एहसास बनकर आते हो तुम, दूसरे ही पल ख्वाब बनकर उड़ जाते हो तुम। जानते हो कि डर लगता है तन्हाइयों से, जानते हो कि डर लगता है तन्हाइयों से, फिर भी बार बार तन्हा छोड़ जाते हो तुम।
1: इतनी बढ़िया शायरी करके आपने तो मुझको डरा दिया बिल्कुल।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: सकते में डाल दिया आपने तो। शमा आपने कहाँ से कॉल की है?
0: मैं जिला सुल्तानपुर से बोल रही हूँ, गाँव तियरी है मेरा जिला सुल्तानपुर।
1: ये कहाँ पर, कादीपुर के पास है?
0: हाँ, पड़ता है।
1: चलिए आज टाइम यहाँ पे बहुत कम है, आपका गाना भी चलाना है, तो गाना साजन का बहुत प्यार करते हैं ये लगाना है ना, तो एक आध लाइन कुछ
0: फेमेल
1: और
0: किया, फेमेल में।
1: हाँ हाँ वही फीमेल में ही सुनवा रहे हैं। जल्दी से कुछ और कहना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, आपका गाना चल चुका है।

0: ठंडी खत्म हो चुकी है, गर्मी आ गई है, बहुत तेज है, हवा चल रही है, गर्मी हो रही है कल से बहुत ज्यादा।
1: चलिए, हमारे सभी साथी आकाशवाणी अयोध्या से आपको बताते रहते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात में कैसे बचना है।
0: जी,
1: शुक्रिया,
0: बहुत ख्याल रखना है।

ये था आपके मीत अमरजीत के साथ आज का बातों का सफर, गीतों का सफर हेलो अयोध्या प्रोग्राम में। कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा, जो सुबह से ही मेरे साथ हैं 5:30 बजे से। तो आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अमरजीत है जब आपके पास तो फिक्र की क्या है बात। बस इसी तरह से आकाशवाणी अयोध्या सुनते रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या। ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अगले कार्यक्रम अब आप कुछ ही देर में सुनेंगे आराधना श्रीवास्तव के साथ।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका नूर नमन सिमरत गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी जीनत अमान इदरीसी नाजिया शाजिया भाई मोहम्मद नादिर मोहम्मद साजिद छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए संदेश भेजते रहिए। और हाँ मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम

0: मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: अरब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, Have you seen a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: Do it again, please. I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet.
3: I put on my

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों

0: पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे। पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था। पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा। और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया। अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकर

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए।

जिनमें चार टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मां

0: त्रिभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी आपने सुने आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं, जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहले जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था।

0: कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जस जी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश भल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी, गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए। मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बताया,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो, गजब।
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
1: हाँ।
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह, क्या बात है।
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी वो वहां के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला। तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
1: अच्छा,
0: यारा।
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई।
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप,
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में, बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी।

0: जी
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म है, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेट पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बात,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चावला साहब, ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए,
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले से शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच की जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं, कुछ भजन, कुछ कव्वाली, कुछ पॉप सॉन्ग्स, इस तरह के अलग अलग गीतों का ये मिला जुला रूप है। तो लीजिए, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस गीत का के साथ, जिसे लिखा है श्याम अनुरागी ने। सुनीता राव ने इसका संगीत बनाया है और एल्बम का नाम है चमके बिजुरिया।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 11:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार, आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भीष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the

0: Honourable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: Namaskar. आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
2: जी,
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार है वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
2: जी।
0: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tir.

0: which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May, marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had, at the beginning of this year, had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं. कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा. उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है. पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्त।

0: विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा,

0: उसका मूल प्रभाव का जो हमें कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्य अवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of Rs. 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव,
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति, इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है और आशुतोष जी इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं भगवान शिव से जोड़ा जाता है तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे तो एकानन भगवान विष्णु चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं अ उ और म तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है पेट के पास से आता है वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से छाती के पास से सीने के पास से ये आती है और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होके हलंत लग के वो म बंद हो जाता है तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं और
1: ध्वजारोहण
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन ये एक प्रात सवन मध्य सवन और सायं सवन तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं एक गहन डूब जाते हैं हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं किस अवस्था में रहते हैं तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से वो भगवान शिव हैं इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया पुराणों में बोला गया और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है उसने अद्भुत प्रदर्शन

0: प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएँ वहाँ रहें, पेयजल की सुविधाएँ रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज़्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और

0: और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
1: दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: Noon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुष्पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूँ तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 बात, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है

0: तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लांघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना।

0: जाएगा है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है भगवान का, एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile

0: also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple, and he is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कृष्ण धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modavadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a Kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से, आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना चौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री, सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोहटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू। समग्र देश अने दुनिया नी नजर जे राज्य नी चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडीचेरी में पण विकास नी राजनीति ने मड़ेला प्रचंड जन समर्थन ना शिल्पी यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवु छू। भगवान सोमनाथ नु मंदिर

0: किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ.

गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और

आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को

तीन परमाणु परीक्षण किए, हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था

मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया। इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं।
इतनी समृद्ध विरासत हमें

लेकिन आप भ्रम ना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक, सामाजिक

केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश पर प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाए जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासी

0: विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
3: ये विशेष अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन ईआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोता सुने फेसबुक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: स्वागत और अभिनंदन है हमारे सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। बढ़ती गर्मी में पुराने गीतों की तरावट लेकर मैं हाजिर हूँ आराधना

भाई कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे विष्णु टेलर जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियों के साथ, जो लिखते हैं भवानी पेट सोलापुर से। जिंदगी में कुछ लोग गीतों की तरह होते हैं, समय बदल जाता है, दौर बदल जाता है, लेकिन उनकी यादें और उनकी आवाज दिल में हमेशा गूंजती रहती है। पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वे बीते हुए खूबसूरत लम्हों की धड़कन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पुराने गीत जो शायद हमारी दिल के एहसास होते हैं, जो दूसरों की आवाज में हमारे कानों में गूंजते हैं, तो ऐसे ही कुछ मीठे पुराने गीतों को लेकर हम हाजिर हैं। कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे फिल्म गाइड के एक मीठे से गीत के साथ, और इस गीत के लिए हम अपने श्रोताओं के नाम लेंगे। विष्णु टेलर सोलापुर से हैं, अरविंद कुमार मधुबनी बिहार से, आफताब अंसारी गंज टुंडवारा से, लालगिरी गोस्वामी श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, नरेश मल्होत्रा पानीपत से हैं, राजेश कुमार वर्मा भवनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, जाकिर मंसूरी मुंगीसापुर से हैं, गजानन येले दुर्गापुर बाबली से हैं, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी छत्तीसगढ़ से हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, शिव चौहान बाबा कुटीर रामगढ़ से, सुनील पाठक जगराव से हैं, अरुण कुमार मालवीय वाराणसी से हैं, विक्रम मालवीय रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। साथ ही हमारे और श्रोता हैं शेख जियाउर रहमान मुरादाबाद से, मोहम्मद यासीन अंजान झारखंड से, रवि कुमार हरियाणा से, प्रवीण श्रीमाली खरगोन मध्य प्रदेश से, पंजा जी नहावकर नरवेल महाराष्ट्र से, सोहन लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, कल्याण सेन विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, विनोद मूड़त बोरखेड़ा से, मसरूर हसन सहारनपुर से, दिलावर खान रघुवीर नगर से हैं, जगमोहन सिंह प्रजापत बागपत से हैं, सुदर्शन शाह नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं, उमा सिंह पौड़ी गढ़वाल से हैं, नीलू मेघ रायपुर से हैं, निसार सलमानी तेलीवाला से हैं और सुरेश राठौर गुजरात से हैं। आप सबके लिए है फिल्म गाइड का मीठा सा ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, यही तो मीठे गीत हैं जिनके साथ हम थिरकने को मचल जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल करेंगे, उससे पहले हम आपको अपने आज प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के बारे में जानकारी दे दें, जिसका प्रसारण किया जाएगा आज शाम 5:30 से 6 के बीच। और आज कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090। कार्यक्रम का समय पुनः आपको बता दें, आज शाम 5:30 से 6 के मध्य। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे फिल्म मल्हार का गीत बड़े अरमानों से रखा है बलम, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम हम लेंगे राधेश्याम शर्मा डांडी खेड़ा से, वेद प्रकाश मिद्दा हनुमानगढ़ राजस्थान से, दिलशाद हुसैन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश राय बलिया से हैं, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, धीरज गुप्ता उगेती से, नाना लाम से छिंदवाड़ा से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, राधा नामदेव सहारनपुर से हैं, संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से हैं, अनिल ताम्रकार कटनी से हैं, वलीउल्लाह अंसारी टुमराव से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ कैंट से हैं और शुभ चंद्र बजाज कालका से हैं। इन्हीं के साथ हम कुछ और नाम लेना चाहेंगे, टीडी मल्होत्रा चंडीगढ़ से, तुलसी मस्कीन शाहदरा दिल्ली से, शंकरलाल जायसवाल एताला महाराष्ट्र से हैं, तुलसीदास चुक चंडीगढ़ से हैं, कमल सिंह मजनू कटिल्ला से, मोहम्मद फरमान दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, सुभाष गोदारा फजिलका पंजाब से, रामचंद्र मखीजा छत्तीसगढ़ से, बालकृष्ण फगवाड़ा पंजाब से हैं, डॉक्टर निषाद नौशाद अहमद सिद्दीकी भिलाई से हैं, सीताराम कांगड़ा रोहतक से हैं, राजेश वर्मा रोड़की कैंट से हैं, लाल बाबू दीवाना दिल्ली से, इरशाद अहमद जौनपुर से और बनवारी जयपाल श्रीगंगानगर राजस्थान से। आप सब सुन रहे हैं फिल्म मल्हार का गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे आथर जैसा ना कोई।
2: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र इस समय आपके साथ है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा लेकर। दोपहर के 1:29 हो चुके हैं। कार्यक्रम की अगली पेशकश होगी फिल्म आपकी कसम से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम हैं नंदकिशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से, बाबू भाई उदयपुर से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, शाहजी बोटके हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, रमेश कुमार मलोट से, हुकुम करमारकर बेरड़ी मध्य प्रदेश से, सुरेश चौरसिया फर्रुखाबाद से हैं, रविंद्र दास किशनगंज बिहार से, सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, राजेंद्र नारंग डबवाली से हैं, प्रकाश निषाद बल्लू आपने अपना पता नहीं लिखा, अगली बार फरमाइश कीजिए पता जरूर लिखिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे श्रोता कितनी दूर तक फैले हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, पसंद करते हैं।

रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से हैं, आर कुमार वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं और जगदीश राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। आप सबने पसंद किया है बेहद ही संजीदा गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से।

जी हाँ दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय बीत गया वो बीत गया, दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए पछताने से अच्छा है कि समय से अपने काम को कर लिया जाए। तो समय की अहमियत को समझते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सुनवाएंगे फिल्म बहू बेगम का गीत। और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है आरसी कामड़े जवाहरनगर दुर्ग से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से हैं, अब्दुल सत्तार अब्बासी बागपत से, मुकेश गोस्वामी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, ज्ञानभूषण शर्मा करनाल से हैं, अनिल जैन मेरठ से हैं, फैसल शेख गंज टुंडवारा से, मोहनलाल प्रजापत बालोत्रा राजस्थान से हैं, अंकुश अरोरा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, अशोक श्याम कुंवर भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रपाल गजबीय छत्तीसगढ़ से, राजकुमार डूडी हिसार से हैं, जख्मी कलीम गंज टुंडवारा से हैं, शंभुदयाल जाखोद राजस्थान से और बनवारी लाल फिरोजाबाद से। फिल्म बहू बेगम का गीत आप सब श्रोताओं के लिए।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

श्रोताओं, एक और मीठे से गीत के साथ हम तैयार हैं आप सबको सुनाने के लिए, दिल तुझको दिया, वादा न तोड़। इस गीत के साथ हम अपने श्रोताओं के नाम लेंगे। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं, राघव बघेल पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं, ताज अंसारी लक्सर हरिद्वार से हैं, हरजिंदर छिंदा नथाना पंजाब से हैं, खिलू परवेज लखनऊ से हैं, हल्के जयपाल यादव बुंदेलखंड से, माधव नामदेव जबलपुर से हैं, दातार सिंह सीकर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता दिल्ली से हैं, अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, मुकेश गौतम चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र चंसौलिया जालौन से हैं, विनय मोहन हरियाणा से हैं, राजू मिगलानी हांसी से हैं। आप सबके लिए ये गीत आप सबके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मजबूर से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है आजन कुमार सिंह वाराणसी से, देवेंद्र कुमार गुप्ता उघैती से, सोमदत्त नाभा पटियाला पंजाब से हैं, मीका विर्क रोपड़ पंजाब से, स्वर्ण गिल ठाकुरावाला से हैं, गोविंद वैष्णव नरसिंहगढ़ से हैं, कुंवर कृपाल सिंह रतलाम से हैं, राजपाल मलोट से हैं, फहीम मंसूरी बांदा से, मुकेश कश्यप दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं, और साथ ही इस गीत के लिए लिखा है हमें एसके अलबख्श ने निजामाबाद से, शरफुद्दीन अंसारी बक्सर से हैं, श्रवण कुमार प्रजापत सहारनपुर से हैं, ओम बगड़िया फजिलका से हैं, और राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर राजस्थान से। फिल्म मजबूर।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

कार्यक्रम में अब है फिल्म अमृत का गीत फनेश चंदन छत्तीसगढ़ से और मोहम्मद रफीक पवार खंडवा से हैं, रिजवान खान छत्तीसगढ़ से, बोधराज खोरवाल दिल्ली से हैं, रुपेश संघई परभड़ी महाराष्ट्र से, अनिल वर्मा कुरावली से, पीरजादा मेहराजुद्दीन पहलगाम से हैं, शमसुल कमर गंज टुंडवारा से, रामशरण बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उत्तम कुमार भगत झारखंड से, अनवर अंसारी मंडी पंजाब से, विनायक बेंडे आकोट से हैं, संदीप कुमार जलंधर से, हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से, मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से। आप सबकी पसंद बना है फिल्म अमृत का ये गीत।

और श्रोताओं, हम अपने श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ अपने गीतों के साथ हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम का अगला नगमा यानी आज के कार्यक्रम का अंतिम नगमा आप सबके लिए पेश करने का वक्त आ गया है और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम हैं ब्रिजेंद्र के जयजान करनाल हरियाणा से हैं, सिसिल डी केस्ट्रो सहारनपुर से हैं, मोहम्मद इंतजार सहारनपुर से, बिट्टू भाटिया हरियाणा से, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, बीके हितेंद्र असम से हैं, अशोक वर्मा सनावद मध्य प्रदेश से, धीरज भाई गुजरात से, किशोर कुमार सांवले सनावद से, गगनदीप थांडी नवाशहर पंजाब से, दिनेश वर्मा रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, सुखविंदर सिंह जोड़ा जनकपुरी से हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से, नंदकिशोर ठाकुर छत्तीसगढ़ से, राजेंद्र गंगवार बरेली से, शेख मूसा सनावत से, मोहम्मद फारूक एटा से, पुखराज बटगुजर नोखा राजस्थान से, सतीश राव आपने अपना पता नहीं लिखा, सुरेंद्र खुराना दिल्ली से हैं, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, सदानंद अकोला से हैं, एम हफीज पंजाब से हैं, बंडू पोपलघट खुपटी महाराष्ट्र से हैं। आप सबके लिए हम इस समय पेश कर रहे हैं मेरा गांव मेरा देश का गीत।

तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अपनी मीठी बातों और अपने नाम पते के साथ आप हमें हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप प्रतिदिन सुनते हैं और हम आपकी पसंद को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का जो शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब आज के कार्यक्रम से आराधना को दीजिए इजाजत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आकाशवाणी अयोध्या से आपने सुना। दोपहर के 2 बजे हैं, अब हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीत गजल कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: आज के कार्यक्रम गीतांजलि की ये पहली पेशकश संसारा की आवाज में मीठा सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि आज शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य होगा हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 73-76-80-40-90। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए

आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या, सोमवार।

0: मुस्तफा जैदी की लिखी बोल को आवाज दी थी गुलाम अली ने, और इसी गजल के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
0: कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: 6.6% के वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में

0: ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने

0: बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच 7:30 PM धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 MHz FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहनें अपना कार्यक्रम सुने अंगना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज।

0: फोन नंबर 9161-877-347।
1: हाजिर रही आज आपके सखी मितु आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम अंगनामा। तो सभी सखियन का हमार प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली आज बात करी थे खरीदारी भी और समझदारी भी। देखो सखी सहेली हमरे सभे अपन क्षमता बुद्धि विवेक के इस्तेमाल कई के कमाई तो करी थे, मतलब वही कमाई का जब हम सभे अपन बुद्धि विवेक के इस्तेमाल कई के खर्च करी थे ना, तो वही माँ हम सभे के समझदारी भी है, यानी कि खरीदारी भी और समझदारी भी। और ये कहावत तो हमरे सभी बचपने से सुने हैं, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारो, यानी अपन आमदनी और अपन बजट के हिसाब से ही खर्च करें माही असली समझदारी होता है। तो सखी का जानती हूँ कि सही खरीदारी खाली पैसा खर्च करके सामान लावे माँ है, बल्कि हम तो कही थे सबसे पहले जौन भी सामान हम लावे जाए थे ना ओके पर्चा बनाए लें कि हमें कौन कौन सा सामान लावक है। जैसे कि जब भी हम बाजार में निकली थे तो फालतू सामान खरीदे से हम बच जाए, और बाजार में जाए पे जगह जगह जैसे कि सेल लाग रहा था ना, सस्ता सामान दिखाते हैं, छूट वाला सामान दिखाते हैं, तो ये सब देख के ना मन बहके लागत है। तो भाई हम तो कह रही थे कि जो है ना मन ना बहके बल्कि छूट के ही चक्कर में ना फंसे, ना ही फालतू सामान अपने घरे में लावे, ना ही तो क्या होता है कि ज़रूरत के सामान तो ना आए पावत और गैर जरूरी सामान घर में भरी जाता है। तो भाई सबसे पहले तो सोचे की जरूरत यही है कि गैर जरूरी सामान से हमरे लोग का बचक है, इसलिए अपन पर्चा जरूर बनाए के ले जाएं। और दूसरा बात बहनी, जब भी सामान खरीदना तो जोन भी सामान हम खरीदी थे ओके गुणवत्ता के पूरा पूरा ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि सस्ता सामान खरीदी थे ये देख के कि सस्ता है और ओकरे चक्कर में जो सामान है वो खराब आ जाए। और फिर कहो जाते ना कि जो है सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, मुला एक मतलब ये ना है कि हर सस्ता सामान खराब ही होता है। हमें ये बात का ध्यान रखे के कि जो भी सामान हम खरीदा थे ओके गुणवत्ता उस सब वो पैसा के हिसाब से ठीक है या ना है। और बात करी थे बहनी अपना ऑनलाइन सामान के, हर केहू के हाथ में देखा मोबाइल आ गया है, और हर सखी जो भी सखी सहेली है ना दिन भर अपन मोबाइल लेके बैठी रहती, दुनिया भर के ऐप डाउनलोड कर लेती और मोबाइल चलावा कर रही थी, और वोमन जो सामान उन्हें दिखाया पड़ा था नीक है चलो यहू मंगा ली वह मंगा ली, तो होते कहा कि सामान तो मोबाइल पर नीक लगा, जरूरत भी ना है तब वो सामान घर में आएगा। तो भाई हमें ये बात का ध्यान रखेगा का वो जरूरत के सामान है या ना है। और कबो कबो भाई देखो बिना सोचे समझे ऐसा साइट से हम सामान मंगा ले थे जो उनकी धोखाधड़ी वाला होता है, तो भाई हमें यही बात के पूरा ध्यान रखे है कि जो भी सामान हम मोबाइल से ऑनलाइन मंगाए थे वो ऐसा तो ना है धोखेधड़ी वाला ऐप हो या साइट हो। तो सखी सहेली जो भी करें हमेशा जांच पर रख के ही करें। और जहाँ तक खाए पिए वाले सामान के खरीदे के बात है ना, तो भाई जब भी सामान खरीदें ओका हाथ से छुई के जरूर देखें कि अच्छा है कि ना है, और साथ ही साथ अगर पैकेट वाला सामान है तो ओपे ओके तारीख लिखी होता है कि कब बना है और कब तक इस सामान के प्रयोग किए जा सकता है। इस सब बातन के ध्यान रख के ही भाई अपन सामान खरीदें। और भाई जब हम इस सब बातन के ध्यान रखब तो अपन घर के जो खर्च है वो बढ़िया से चले और चार पैसा भी बचे। और देखो सकी हाँ बचत के बात होते हैं तो हाथ के कला भी जो है घर के बचत और आमदनी के बढ़िया माध्यम होते हैं। अब जैसे कि पुराना कपड़ा ले ला वो क्या अगर थैला बना लो ना तो बाहर से थैला खरीदे की जरूरत नहीं होता है, तो घर के सामान के प्रयोग भी होते हैं और अपन पैसा भी बचत है। ऐसा बहुत कुछ है कि पुराना कपड़ा से कुशन कवर है, पावदान है या बहुत सा सजावटी सामान बनाए सकते हैं। घर के जो बेकार बोतल है, डिब्बा है, कागज है ओके भी प्रयोग के हम अपन घर में बढ़िया बढ़िया सामान बना सके थे। तो भाई हस्तशिल्प जो कला है ना ओके माध्यम से हम अपन रोजी रोजगार भी कह सकित है और अपन घर का सजाए भी सकित है। तो आज ऐसा ही जानकारी भी हम लेके आए ही हस्तशिल्प कला के को समृद्ध करने में जनजातियों का योगदान। वार्ताकार ही दीपा सिंह बहनी, चलो सुना जाए जाना जाए कि ये का बताओ थी।
2: हस्तशिल्प कला को समृद्ध करने में जनजातियों का योगदान। जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, लोक कला, हस्तशिल्प अपने आप में लालित्यपूर्ण विधा है। इनकी कला का प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक

विस्तार है। जनजातियों का समृद्ध सांस्कृतिक व लोक परंपरा से युक्त उनका इतिहास गौरवशाली रहा है। इनकी कला और संस्कृति का हमारी लोक संस्कृति के साथ घनिष्ठ संपर्क है। यह समुदाय अपनी समृद्ध और उत्कृष्ट हस्तशिल्प के लिए जानी जाती है। इनकी जो लोक परंपरा है उन्हें हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि इन्होंने हमारी एक विरासत को संभाल के रखा है। भारत की जनजाति अपनी विविध संस्कृति, कला, नृत्य, गायन, वादन, वाद्य यंत्र और विशेष हस्तशिल्प के लिए जानी जाती है, जो इनकी पहचान है। इनके रीति रिवाज, भाषा, परंपरा, जीवन शैली, प्रकृति की देखभाल व प्रकृति के बीच अपने निकट रहना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भरता, आर्थिक संपन्नता को बढ़ावा देते हैं। जनजातियों के हस्तशिल्प उनकी सृजनात्मकता और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक है, उनकी पहचान को दर्शाती है और उनके आर्थिक, सामाजिक व स्वयं की संरचना को मजबूत करती है। वह सशक्तिकरण का एक मुख्य स्तंभ भी है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय के स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलता है। जनजातीय हस्तशिल्प कला भारत के कुछ राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के आदिवासियों द्वारा निर्मित कलाकारी प्रसिद्ध है। इनके द्वारा बनाए गए चित्रकारी, टेराकोटा कला, मूंज शिल्प, लकड़ी धातु, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, कपड़े बुनने का कार्य, चटाई बुनना, टोकरी बुनना, जूट का बैग बुनना, बांस की डलिया, झाड़ू बनाना, सजावटी घरेलू वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां बनाना, बर्तन, खिलौने, दीपक बनाना न केवल इनकी आर्थिक और सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन व स्थानीय रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें अपने ही क्षेत्रों में आय के साधन व आर्थिक संपन्नता मिल रहा है। हस्तशिल्प में जनजातियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, विरासत है, वह इनकी पहचान है। इनके द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकारी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गून पेंटिंग, छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा मेटल शिल्प, कास्ट कला, देवी देवताओं की मूर्तियां, बांस शिल्प, बांस की टोकरियां, शूपा, चटाई, मछली पकड़ने का जाल और जो सबसे प्रसिद्ध है वह है गोदना कला, तथा उत्तर प्रदेश की थारू जनजातियों द्वारा दरी बुनना, मूंज शिल्प आदि प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग व मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग आज हर घर में अपनी पहचान को बनाए हुए है, जो वहाँ की जीवन शैली, सादगी, प्रकृति के प्रति प्रेम, दैनिक ग्रामीण जीवन, पशु पक्षी के प्रति लगाव, प्रकृति पूजा आदि की चित्रकारी की लोकप्रियता विश्वविख्यात है, जिन्हें प्राकृतिक रंगों के प्रयोग कर सफेद रंग, चावल का आटा और गेरू से मिट्टी के दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किए जाते हैं। यह चित्रकारी दीवारों से होते हुए कागज, कैनवस, कपड़ा जैसे साड़ी, कुर्ती, गमछा, चादर, कुर्ता आदि पर कलाकारों ने अपनी कला की बारीकियों से सजाया है, वह कलाकारी को उतारा है, जिससे उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली और उनके द्वारा बनाए गए कलाकृतियों का उपयोग फैशन, होम डेकोर और वैश्विक प्रदर्शनियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वही मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकारी लाइफस्टाइल, फैशन व कपड़े, साड़ियां, स्कार्फ, हैंडबैग, कुशन कवर, सेरेमिक बहुत लोकप्रिय है, जो इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कला आदिवासी परिवार के लिए आजीविका का मुख्य साधन बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण गोंड पेंटिंग की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, जो इन कलाकारों की
कृतियां 2000 से लेकर

0: और कभी कभी 1 लाख रुपए तक बिकती है। उड़ीसा राज्य की संथाल जनजाति व पश्चिम बंगाल में रहने वाले संथाल समुदाय के लोगों द्वारा टेराकोटा के सुंदर आकर्षक आभूषण अपनी पारंपरिक हस्तकला को जीवित रखते हुए मिट्टी के सुंदर व रंगीन आभूषण तैयार करते हैं। इनके द्वारा बनाई गई टेराकोटा ज्वेलरी भारत की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। टेराकोटा का अर्थ है पकी हुई मिट्टी। यह आभूषण अक्सर प्रकृति, वनस्पति और जीव जंतुओं जैसे मोर, फूल पत्ती, बेल बूटे, मछली प्रकृति प्रतीकात्मक से प्रेरित होते हैं, जिनमें इनके द्वारा बनाए गए शिल्प में झुमके, चूड़ियां, कंगन, खिलौने, मूर्तियां, घर की सजावट की वस्तुएं, बर्तन आदि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने में महिला कारीगरों की बड़ी भूमिका होती है। वे घर बैठे ही अपनी कला के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र व मजबूत हो रही हैं। राजस्थान के जनजातियों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प मिरर वर्क शीशे का काम इनके सबसे बड़ी पहचान लहंगा चोली चुनरी के ऊपर छोटी छोटी शीशे जड़ना कढ़ाई में कौड़ियों सिक्कों मोतियों जड़कर सुंदर झोले बैग बटुए गहनों में सिक्के और मोतियों से सजे पारंपरिक हार चोकर कमरबंद झुमकी चूड़ियां कंगना हसुली बोरला आदि गहने पूरे विश्व में विख्यात है व घर घर में उपयोग की जाने वाली आज की सबसे प्रसिद्ध आभूषण जो लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के थारू जनजातियों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके कई सुंदर इको फ्रेंडली हस्तशिल्प बनाए जा रहे हैं। थारू जनजाति मूंज शिल्प और सन का उपयोग करके कलात्मक टोपियां, चप्पल बैग और खिलौने टोकरी बनाती है। इनके समुदाय द्वारा बनाई गई दरी आज हर घर में प्रयोग की जा रही है। इन शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना और विभिन्न मेला महोत्सव में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। जनजातियों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाएं, आर्थिक व स्वरोजगार योजनाएं, विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए PM जनमन योजना, विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूह के लिए हस्तशिल्प मंत्रालय द्वारा कार्यशालाएं, वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हथकरघा हस्तशिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ना, भारत में जनजाति हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और बिक्री मुख्य रूप से ट्राइफाइड ट्राइबल कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, जिनमें इनके द्वारा बनाए गए शिल्पकारी की प्रदर्शनी लगी रहती है, जिसे देख तथा खरीद सकते हैं। प्रमुख आयोजन एवं संस्थाएं आदि महोत्सव जनजाति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्षीय राष्ट्रीय उत्सव गांधी शिल्प बाजार ग्रामीण और जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में लगने वाला मेला ट्राइब्स इंडिया यहां पर जनजातियों के कपड़े गहने पेंटिंग जैसे वर्ली गोंड और प्राकृतिक उत्पाद देख तथा खरीद सकते हैं। GI टैगिंग जनजातीय उत्पादों क्राफ्ट को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल ऑफ इंडिया दिलाने में मदद की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान वर्तमान में प्रदेश के जनजातियों के हस्तशिल्प सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यशालाएं शोध महोत्सव मेला व प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जिससे इनकी कला और समृद्ध हो सके।
1: देखो सखी, हस्तशिल्प कला को समृद्ध करने में जनजातियों का योगदान वार्ताकार हैं दीपा सिंह बहनी बहुत ही अच्छे से बताएं। बात पत कही आगे और भी हुई मुला छोटे से अंतराल के बाद।
2: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 8 3031 99 11

0: WKENG टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
4: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
8: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
9: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
10: छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपकी सखी मीतू। देखो सखी, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। सखी, पढ़ाई वो रोशनी है जो उनकी जिंदगी के हर अंधियारा का दूर कह देता है। शिक्षा खाली किताबन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमका सोचे के, समझे के और आगे बढ़े के ताकत भी देते हैं। और भाई, जब बच्चे पढ़े हैं तभी तो समाज मजबूत बनी, परिवार जागरूक हुई और अपन देश के तरक्की भी हुई। और देखो भाई, हमारी सरकार सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के मकसद भी यही है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी हर बच्चा तक शिक्षा पहुंचे। और ये अभियान के तहत सबका मुफ्त पाठ्य पुस्तक, स्कूल के ड्रेस और दोपहर के जो खाना है वो मुफ्त मिलत है। तो सखी सहेली, ये अभियान के नारा सब पढ़ें सब बढ़ें सिर्फ नारा ही ना है, बल्कि बेहतर भारत के सपना भी है, जो उनकी पूरा करब हम सभी के मकसद होए का चाहिए। और यही खातिर अपन घर माँ, पड़ोस माँ, जोन भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हों, चाहे वो बेटवा हो या बिटिया हो, उनका पढ़ावे भेजे के पूरा प्रयास करे के चाहिए। और जब ये प्रयास सफल हुई तभी तो देखो अपन ये अभियान भी उन्हें सार्थक बनी और अपन भूमिका जरूर बढ़िया हुई। तो भाई चलो, यही के साथ एक बढ़िया सा गीत भी सुना जाए, जो उनकी है ऋतुपर्णा वर्मन की आवाज़ में।

तो सखी सहेली गौने सुन के खुश तो होंगे वही है, मुला देखो भाई ऐसे थी गर्मी कितनी बढ़ गया है, सूरज की गर्मी से सब क्यों परेशान है। और ये गर्मी में भाई हम सभी का अपने खान पान के पूरा ध्यान रखे के चाहिए, खासतौर पर जो खान पान ऐसा हो ना जो उनके शरीर का ठंडा रखे। तो सखी सहेली गर्मी में तरबूज के सेवन जरूर करें, ये शरीर का ठंडा भी राखत है और शरीर का कईयों में से पोषक तत्व भी ऐसे मिलत है। तो आज हम बात करी थे तरबूज के शरबत के। तो सखी सहेली पेन कागज निकाल लें, सामग्री नोट कर लें, जिसमें सामग्री है तरबूज के टुकड़ा काट के रखना है एक कटोरी, सब्जा के बीज एक चम्मच इच्छा अनुसार अगर हुए घर में तो का रख लें, नहीं तो कोनो जरूरी ना है, पुदीना के पत्ता 5-6, नींबू के रस एक चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, बर्फ के टुकड़ा 3-4, पानी आधा गिलास। एक बनावे की विधि ऐसा है कि सबसे पहले सब्जा के बीज का एक घंटा तक भिगोए के रख दें और एक घंटा बाद वो निकाल के कटोरी में निकाल के रख लें। ओकरे बाद एक कटोरी तरबूज के टुकड़ा जो है वो का मिक्सी में डालें, वहाँ थोड़ा सा पानी डालें, मिक्सी में डाल के चला लें और फिर वहीं में नींबू के रस, पुदीने का पत्ता, स्वाद के अनुसार काला नमक और बर्फ के टुकड़ा डाल के फिर से एक बार चला लें। जब सब चीज़ साथ में मिल जाए तो गिलास में निकाल लें और बर्फ के छोटा छोटा टुकड़ा कहके डाल सकते हैं अगर पिया चाहें, और साथ ही में ऊपर से नींबू के गोल टुकड़ा डाल दें, सब्जा के बीज डाल दें, पुदीना के पत्ती से सजाए के ओका परोसें और भाई देखो पिएं, ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ठंडा होता है। तो भाई अब चलो एक गौनी और सुना जाए।

0: तो सखी सहेली गीत के साथ है आज के कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में नीक नीक गीत कहनी और जानकारी के साथ है फिर मिला जाए। तब तक के लिए मितू का दे अनुमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।

बहनों ने अपना कार्यक्रम अंगना सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज है सोमवार 11 मई 2026 और आज शाम 5:30 से 6 के मध्य होगा हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और इसमें आज हमारी चर्चा का विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 73-76-80-40-90। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 5:30 से 6 के मध्य। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं केंद्रीकृत विविध भारती।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
1: बिल्कुल
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब
1: जरूरी
2: तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी
2: रहती है, तभी निकलती है। तो
1: बिल्कुल
2: हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिख कर दी
1: है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं एक गीत।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना तो यही गाना गुनगुनाते भी
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ऐसे,
0: बिल्कुल
1: धुन सुनाई देती है ऐसे, मोह सुनाई देते हैं, तो लगता बस एक बार नाची लो
0: नाची लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले।

0: साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पांथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करेगा और ना किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका ना था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है, इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है, उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा, थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन

0: साफ कर गई। काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांजी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही, और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसान देह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया

0: तो खैर, नहीं तो नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक के सावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक के सावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच कर कि ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजी है इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी

0: नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है, तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमा।

0: सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
1: उनकी डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता
0: ही था।
1: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास
0: आती है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्ती रहते हैं। जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ मन में कुछ था। वरना आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करते हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
1: बिल्कुल, सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन
0: तो आप नहीं निभा पाओगे,
1: दोस्ती नहीं निभा पाओगे।
0: तो हमारे दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है मंजरी, मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल कॉलेज नौकरी आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है, और बहुत अच्छी बात है जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने कहां गए।
0: सही बात है, कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप कहाँ रहती हैं, वही मंदाकिनी है
1: हमने
0: जो कभी साथ पढ़ा करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना,
1: बिल्कुल सही बात।
0: वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है,
1: कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ
0: समझ लिया। तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधन कारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त है। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी
0: इन्होंने। बिल्कुल, मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण है। यहाँ कुछ मुख्य वजह है, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिससे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो हाँ तो मंजरी बताइए हमारे दोस्ती में और क्या क्या होता है।
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं
0: है ना? मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं भाई, मुझे तो लगता है दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
0: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ, चलिए ठीक है कर लेंगे। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
0: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
0: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें की, दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठ कर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे दाल पीठा और सत्तू का शरबत।
0: जी,
1: तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखती है कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही है चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या
1: लिखते
0: कह रही
1: हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का और जौ होता है, जिसे लोग कहते हैं लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हमें पता चल गया कि हम
0: दोनों में क्या फर्क होता है।
1: हाँ,
0: जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है कि बिहार के व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
0: तो अगली बार आप मेरी अच्छी दोस्त है ना
1: जी,
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली है। ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपी को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से है पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है, थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
0: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई, लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट

0: भारत में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी लेकिन
1: अच्छा लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में
1: डॉक्टर साहब पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1,00,000 बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं लेकिन हम लोग जो कहते हैं एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा
1: अच्छा
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं नॉर्मल त्रुटि जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार न होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है इसके लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे या हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूंगा

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या है?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है, या आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना, या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा। जिससे इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है,
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं, माए देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर

कहते हैं आजकल बैंक सिर्फ बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स में भी होते हैं। डिजिटल पेमेंट आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए तुरंत पैसा भेजा जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग बैंक जाए बिना खाते का प्रबंधन करना जैसे योनो, एसबीआई, एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट ऐप्स, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश करने के लिए हम ग्रो, जीरोधा, रॉबिनहुड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेंडिंग, आज हम क्रेडिट बी लेंडिंग कार्ड ऐप्स के माध्यम से डिजिटल लोन ले सकते हैं। इंश्योरटेक, पॉलिसी बाजार ऐप्स के माध्यम से हम ऑनलाइन इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट एनालिस्ट, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट और रिस्क मैनेजर के रूप में स्टूडेंट्स अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरी बात, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। पहले व्यापार दुकान, ग्राहक और नकद लेन देन तक सीमित था, लेकिन अब एक छोटा व्यापारी भी अपना सामान घर बैठे पूरी दुनिया में बेच सकता है। आज के समय में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म ने व्यापार को घर घर तक पहुंचा दिया है। कोई भी व्यक्ति बिना पूंजी के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है। इस क्षेत्र में सप्लाई चेन मैनेजर, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट और परफॉर्मेंस मार्केटर के रूप में स्टूडेंट्स अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरा, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। वर्तमान समय में डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि डेटा नया तेल है, डेटा इज दी न्यू ऑयल। हर कंपनी के पास जानकारी का भंडार है, लेकिन उसे समझने वाले प्रोफेशनल्स की कमी है। अब आप सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि आप ये भी बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इस क्षेत्र में बिजनेस एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के रूप में छात्र अपना कैरियर बना सकते हैं। वर्तमान समय में सफलता के लिए सिर्फ डिग्रियों का ही होना काफी नहीं है, बल्कि आपके पास कुछ नए स्किल्स भी होना जरूरी है, जिनके जरिए आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें तीन स्किल्स अत्यधिक आवश्यक हैं। टेक लिटरेसी, आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, विशेषकर एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। एनालिटिकल थिंकिंग, इस डिजिटल युग में आपको डिजिटल स्किल्स विकसित करते हुए आंकड़ों में छुपी हुई कहानियों को भी समझना नितांत आवश्यक है। अनुकूलन क्षमता, वर्तमान डिजिटल युग में आपको लगातार खुद को अपडेट रखना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती हुई नजर आ रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि डिजिटल क्रांति कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रयासों ने भारत को दुनिया का एक टेक हब बना दिया है। आज आप नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं, बस सीखने और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए और उस उड़ान के लिए तैयार हो जाइए जहां
आसमान

0: भी छोटा पड़ जाए। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था डिजिटल क्रांति, कॉमर्स में करियर की नई उड़ान। वार्ताकार थे प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा साहब शाह। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। आइए चलते हैं अपने अगले साप्ताहिक सेगमेंट रोजगार समाचार की तरफ, जिसमें हम जानेंगे सप्ताह भर में आई हुई भर्ती परीक्षाओं के बारे में। रोजगार समाचार की पहली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला टूल किट्स वितरण योजना के अंतर्गत, जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र 25 मई 2026 तक भरे जा सकते हैं। इच्छुक महिला या पुरुष अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, वे आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट upmatikalaboard.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है। इसके लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बिहार बीपीएससी इंटीग्रेटेड 72 प्रिलिमिनरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2026 की, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड के यूपी कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी जानकारी रोजगार समाचार में सप्ताह भर में आई हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, इन दिनों गर्मी से जीना बेहाल हुआ है, धूप का तो पूछिए मत। धूप इतनी तेज पड़ रही है, लगता है शरीर ही जल जाएगी। पड़ रही गर्मी और धूप को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अधिक गर्मी वाले समय विशेषकर दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें। नंगे पैर बाहर न

निकलें, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से यथासंभव बचें तथा बासी भोजन का प्रयोग न करें। बच्चों तथा पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों में न छोड़ें। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम का कार्य न करें। अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें। रसोई वाले स्थान को ठंडा रखने के लिए दरवाजे तथा खिड़कियाँ खोल दें। दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे स्वर दिया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, गीतकार हैं अनवर सागर, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, फिल्म है खिलाड़ी।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। साथियों देखते देखते समय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, आइए जानते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल के कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। भारतीय इतिहास से सेगमेंट में बात होगी मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में और होगा चक्रव्यूह सेगमेंट। साथ ही सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत संगीत भी। साथियों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, मिलते हैं फिर आपके अपने इसी पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त कृष्णमणि पांडे को। नमस्कार।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 5:30 में हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। मैं हूँ सरस्वती पाठक और अगले 30 मिनट तक आज हमारी बातचीत का विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर की जैसा कि हमारा विषय है आज का ऑस्टियोपोरोसिस, तो सबसे पहले इसी के विषय में बताएं कि ये बीमारी है क्या।
2: जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है।
1: जी
2: देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, उसमें होल हो जाना। हड्डियों में नॉर्मली भी पोर्स होते हैं, पोर मतलब होल होते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस में वो छेद बड़े बड़े हो जाते हैं, स्पेसेस बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हिंदी में इसको कहते हैं पोलापन। जैसे हड्डी है, सॉलिड है, और उसमें अंदर में स्पेसेस बन गए तो पोलापन हो गया।
1: जी,
2: तो इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
1: जी, वैसे हड्डियों की संरचना में ये जो छिद्र है ये नेचुरल रूप से होते हैं।
2: नेचुरल रूप से होते हैं, ऐसी संरचना होती है कि बहुत बारीक छिद्र होते हैं।
1: तो थोड़ी सी संरचना के बारे में बता दीजिए।
2: हड्डियों की संरचना ऐसी होती है कि इसमें जैसे कैंसिलस बोन होती है, कॉर्टिकल बोन होती है, लेकिन इसमें जैसे घुमावदार संरचना होती है उसको लैमेली बोलते हैं, और बीच बीच में स्पेसेज होते हैं, उन स्पेसेज के

0: रूह खून की नसें और तंत्रिकाएं ये सब ट्रेवल करती हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की संरचना होती है, हर्ल्स टाइप की संरचना बनी होती है। तो स्पेसेज होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये छेद बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं और एक्सरे में हड्डियां बिल्कुल एकदम धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती हैं, उनका सफेदी कम हो जाती है
1: जी।
0: तो इस टाइप से होता है
1: जी। किस उम्र के लोगों को अधिक होता है ये?
0: देखिए ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हम आपको यूं बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितने प्रकार का होता है
1: जी,
0: तो आपको समझना इजी हो जाएगा। एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी वो होता है जो अपने आप होता है, बाहर से उसका कोई फैक्टर नहीं होता
1: जी।
0: इसमें दो प्रकार के हैं, महिलाओं में पोस्ट मीनोपॉजल जब ये माहवारी बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन हो जाते हैं
1: जी,
0: तो बोन में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है
1: जी,
0: और धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरा होता है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस टाइप टू होता है, जो इसमें बुजुर्गियत की उम्र में 50 साल 60 साल के बाद चाहे जेंट्स हों चाहे लेडीज हों, उम्र के प्रभाव की वजह से बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है, हड्डी बनती कम है और बिगड़ती ज़्यादा है, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है
1: जी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या ये अनुवांशिक भी हो सकता है?
0: अनुवांशिक हो सकता है अकेशनली, अगर किसी रोग से एसोसिएटेड है तो। अब इस पर हम बात ये करेंगे कि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने रोग नाम लिया
1: जी, जी,
0: तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कोई बीमारी पहले से शरीर में है उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता की वजह से हड्डी से कैल्शियम मोबिलाइज होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है
1: जी।
0: तो हड्डी में कैल्शियम फास्फोरस की जब कमी हो जाती है तो पोलापन हो जाता है
1: जी।
0: ये है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। या कोई स्टीरॉयड टाइप की दवाई ले रहा हो, एंटी कैंसर ड्रग ले रहा हो, उसमें भी ऐसा होता है
1: जी।
0: क्योंकि कोई बीमारी हो गई हो, जैसे किसी जोड़ का टीबी हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो आसपास ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया हो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है
1: जी।
0: बहुत स्मोकिंग करता हो, स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस
1: जी, जी।
0: बहुत स्मोकिंग करता हो, बहुत अल्कोहल लेता हो, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है।
1: यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी और उसके बाद एक सेनाइल जो आपने बताया 60 वर्ष की उम्र में होता है
0: जी।
1: तो हड्डियां तो हमारे सिर से लेकर पैर तक में फैली हुई हैं
0: जी।
1: तो ये क्या ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी हड्डियों में होता है?
0: आपका प्रश्न बहुत ही गहरा, बहुत ही साइंटिफिक है
1: जी।
0: तो इसको इस तरह से डिवाइड करने के लिए दो टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस मानते हैं, लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस और जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस
1: जी।
0: जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस में पूरे शरीर की हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है
1: जी,
0: जिसमें ये पोस्ट मीनोपॉजल हो गया, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या ऐसी बीमारी को जैसे कैंसर टाइप बीमारी है, मल्टीपल माइलोमा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है
1: जी।
0: जो पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं उसमें जनरलाइज्ड होता है। और ऐसी बीमारियां जैसे टीबी हो गया या चोट लोकल का हो गया, कोई जोड़ जाम हो गया, कुछ हो गया
1: जी।
0: उससे संबंधित रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो आसपास की हड्डियां प्रभावित होती हैं, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस
1: जी। ऑस्टियोपोरोसिस कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, लोकलाइज्ड हो, इनका लक्षण क्या क्या होता है?
0: ऑस्टियोपोरोसिस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, साइलेंट बोन डिजीज। साइलेंट बोन डिजीज नाम देते हैं कि ये बाहर से ऐसे पता नहीं चलता
1: जी।
0: ऑस्टियोपोरोसिस पेन से पता चलता है और जब इसमें क्रैक्स पड़ते हैं हड्डी में, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इसमें पेन होने लगता है
1: जी।
0: तब जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस थी, उसकी वजह से हो गया। जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुई, ऑस्टियोमलेशिया हुआ। अभी आज ही मैंने एक 12 साल की बच्ची को देखा
1: जी।
0: उसके शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से दोनों नेक फीमर फ्रैक्चर हो रहे थे
1: जी।
0: डिस्प्लेस नहीं हुए थे लेकिन फ्रैक्चर हो रहे थे। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल ऑस्टियोपोरोसिस, या बेसिकली ये ऑस्टियोमाइलाइटिस।

0: मलेशिया की कैटेगरी में आता है जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है, अपने आप क्रैक हो जाती है और कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी से अक्सर होती है।
1: जी, आपने चूंकि बच्चे की अभी बात की तो मैं जानना चाहूंगी कि जो एक छोटा बच्चा होता है उससे शिशु से लेकर के और बड़े होने तक जो कैल्शियम की हम लोग एक दवाइयाँ कुछ आती हैं या कुछ लिक्विड फॉर्म में आती है जिन्हें हम एक बार में भी इस्तेमाल कर लेते हैं सप्ताह में एक बार, तो बच्चों को किस तरह से लेना चाहिए, कितनी उम्र तक और कैसे कैसे, उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइए।
0: देखिए, नॉर्मली अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी किसी को नहीं है, खाना पीना उपयुक्त मात्रा में मिल रहा है, तो उसको एडिशनल सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती।
1: जी,
0: लेकिन अगर किसी को भोजन की डिफिशियंसी है तो उसको दिया जा सकता है प्रोफाइलेक्सिस के रूप में कि आगे उसको दिक्कत ना हो।
1: जी,
0: नॉर्मल कैल्शियम की डोज 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम पर डे होती है।
1: जी,
0: और विटामिन डी 60,000 यूनिट्स पर वीक या 10,000 यूनिट्स पर डे दिया जाता है।
1: जी, हम अपने सभी श्रोताओं को एक रिमाइंडर दे दें कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं हूं सरस्वती पाठक और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की बीमारी है, उसके बारे में और कारण और उपचार के विषय में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ अयोध्या से डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी जी को। डॉक्टर, अगर हम बात करें कारण की तो क्या क्या कारण है? वैसे आपने बातचीत में काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि बीमारियां हैं या फिर अल्कोहल का लेना है, उसके अतिरिक्त और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है?
0: जैसे कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो हमने आपको बताया पोस्ट मेनोपॉजल जो हार्मोनल से संबंधित है, ईस्ट्रोजन डिफिशियंसी संबंधित होता है
1: जी।
0: फिर सेनाइल एज रिलेटेड है
1: जी।
0: फिर जनरलाइज ऑस्टियोपोरोसिस में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है जिसकी वजह से होता है, और कुछ मैलिग्नेंसीज में मल्टीपल मायलोमा है, ये भी एक कैंसर टाइप की बीमारी होती है, और पूरे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और के कॉमन कारणों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है
1: जी।
0: तो ये ऐसे कॉमन बीमारियां हैं जो अक्सर क्लिनिक में देखने को मिलती हैं
1: जी। डॉक्टर, आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे, किस तरह से मरीजों की संख्या पहले से बढ़ी है, क्योंकि खान पान भी बहुत कुछ बदल गया है पहले से?
0: हमें तो लगता है कि जैसे जो ऑस्टियो मलेशिया टाइप की या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जो थे पहले ज़्यादा होते थे
1: जी,
0: अब कम है कंपैरेटिवली।
1: हाँ,
0: बहुत कम है
1: जी।
0: ये हमें लगता है कि जो फैमिली इनकम बढ़ने से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था बेहतर हो गई है, तो कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी बीच बीच में लोग मिल जाते हैं
1: जी।
0: और ज़्यादा जो मिलते हैं वो या तो ऐसे घर की महिलाएं होती हैं जो अक्सर घर के अंदर ही रहती हैं, या जैसे कुछ सोसाइटीज में जो बहुत ज़्यादा कवर्ड बॉडी को रखते हैं जिससे सन रेज नहीं मिलती हैं, सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, जिनसे हमारी स्किन से विटामिन डी बनता है। और जैसे मुस्लिम सोसाइटी में है तो हमेशा काले कपड़े से कवर्ड रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो उन लेडीज में ये बहुत कॉमन है कंपैरेटिवली।
1: जी, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का खान पान और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका खान पान कुछ अलग होता है, किस तरह के पेशेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, आपके पास जो पेशेंट आते होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास एक पिक्चर, एक सिनेरियो क्लियर होगा।
0: हमें लगता है कि जो शहरी महिलाओं में जो अक्सर आती हैं इस टाइप के डिसऑर्डर वाली, जो शहरी क्षेत्र में और नॉन वर्किंग ग्रुप की महिलाएं हैं
1: जी,
0: उसमें ज्यादा है। नॉन वर्किंग ग्रुप हमें लगता है इसलिए है कि इनकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती है, जो कि बोन फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है
1: जी।
0: एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, अगर कोई व्यक्ति ना करे मस्कुलर एक्सरसाइजेज तो उसकी बोन टाइम के साथ वीक हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है
1: जी।
0: तो जो महिलाएं अक्सर घर की चार दीवारी के अंदर बंद होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं।
1: तो फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, वो चाहे तो व्यायाम ही कर सकती हैं घर पे ही रह के।
0: बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, उससे बोन स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, फ्रैक्चर की संभावनाएं

0: कम होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है।
1: यानी इतने सारे जो हमने कारण पढ़े, जो प्राइमरी चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि फिजिकल एक्टिव ना होना। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं और समस्या बताएं।
2: ये जगदीश जायसवाल है। हमारी मैडम जो है, मैडम ये उसमें गिर गई थी होली में, तो मतलब जांच वांच करा, उसमें कुछ निकला नहीं नॉर्मल, लेकिन जो है उठने बैठने में दिक्कत तो हो रही, दवा हुआ तो चल रही है, मतलब दिखाया, लेकिन आराम तो है, लेकिन मतलब समस्या बनी हुई है उठने बैठने में, अभी थोड़ा दिक्कत फिर भी चल रही।
0: जगदीश जी, दर्द कहाँ होता है उनको?
2: ये पैर में है सर जी, पैर में।
0: पैर में है तो उनको किसी हड्डी के डॉक्टर को,
2: जैसे फिसल गिर गई थी, बच्चों को छोड़ने गई थी, स्कूल से ला रही थी तो वही गिर गई थी।
0: तो हमें लग रहा है कि काफी एक्टिव महिला हैं, बच्चों की स्कूल से ला रही थी, गिर गई थी, तो आशा है कि नीचे कोई चोट लग गई होगी, या तो स्प्रेन हो गया होगा, या तो हड्डी पे चोट लग गई होगी। तो किसी
2: जांच कराया सर जी, लेकिन उसमें नॉर्मल ही बदलाव है, लेकिन समस्या बनी हुई है।
0: तो खाली लिगामेंट स्प्रेन होगा और 5-6 हफ्ते लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, किसी डॉक्टर की सलाह से इलाज करिएगा।
2: जी
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जगदीप जी। जी डॉक्टर, ऐसे लोगों में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, किस किस तरह के लक्षण या किस किस तरह की समस्याएं उनको आती हैं उनके डेली रूटीन में?
0: ज्यादातर तो ये होता है, इस टाइप से लोग आते हैं कि जब उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाते हैं
1: जी,
0: मेजर या माइनर, तो वो उस पेन को लेके क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं
1: जी।
0: कुछ लोगों को बैक पेन होता है, और बैक पेन का जो प्रमुख कारण होता है रीढ़ की हड्डी में क्रैक पड़ जाना
1: जी,
0: माइनर या मेजर। कुछ में तो ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं कि दो दो तीन तीन चार चार रीढ़ की हड्डियां कोलैप्स कर जाती हैं, पिचक जाती हैं, और पूरा रीढ़ टेढ़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बुजुर्गियत में रीढ़ की हड्डी पूरा ऐसे टेढ़ी हो जाती है, कर्व हो जाती है
1: जी।
0: इसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बॉडी वेट से रीढ़ की हड्डियां दब जाती हैं, और कई हड्डियां दबने से रीढ़ टेढ़ी हो जाती है
1: जी। डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, एक कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे बातचीत जारी रखेंगे
0: जी।
1: हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार भाई, हमारे दोनों पैर के गांठ में बहुत दर्द होता है, और उठने बैठने में बहुत तकलीफ है, यही के लिए कॉल किया
1: जी। अपना नाम बताइए।
3: चंद्रभूषण पांडे, काम कर रहा है हरैया बस्ती
1: जी। चंद्रभूषण जी, घुटने में दर्द होता है चंद्रभूषण जी के।
0: पांडे साहब नमस्कार। पांडे जी, ऐसा है कि जो दोनों घुटने में दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कि आपकी एज 60 साल या प्लस ही होगी।
3: हमारी 76 साल उम्र है साहब
0: जी। तो आपके दोनों घुटने में शायद ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, उम्र के साथ जोड़ घिस गए हैं, अब घुटने टेढ़े भी हो रहे होंगे, इसलिए आपका चलने पर चलने फिरने में दिक्कत हो रही होगी। तो इसके लिए आप अपने किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को नजदीक में दिखा लीजिए, हो सकता है दवाई से कुछ मदद हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है।
3: श्रीमान जी, आप अच्छे डॉक्टर को बताइए नाम, हम वहाँ जाएं।
0: अरे सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है अपने आस पास, जरा सा पता लगा के लोगों से चले जाइए, यहाँ डॉक्टर का नाम बताना उचित नहीं होगा।
3: अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ऐसे ही शिक्षित डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे।
3: धन्यवाद,
0: नमस्ते
1: जी। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी। डॉक्टर, लक्षण की हम लोग बातचीत कर रहे थे, और कौन से लक्षण होते हैं
0: जी? तो सबसे कॉमन लक्षण है कि पेन
1: जी,
0: दूसरा टेढ़ापन। कभी कभी क्या होता है
1: जी, टेढ़ापन की बात कर रहे हैं तो किन हड्डियों में टेढ़ापन आएगा? जैसे आपने रीढ़ की हड्डी बताई, तो
0: अब हम दूसरी हड्डी बताने जा रहे हैं घुटने के नीचे। अक्सर अपर टिबिया, टिबिया बोन के ऊपरी भाग में ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में, और ज्यादातर जिनके घुटनों में गठिया भी होता है, तो कुछ टेढ़ापन गठिया से आता है, और फिर टेढ़ापन की वजह से जो एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से प्रॉक्सिमल टिबिया बोन फ्रैक्चर हो जाती है, क्रैक हो जाती है
1: जी,
0: और फिर और जल्दी टेढ़ापन आ जाता है। तो लोग
1: जी, पैर के नीचे की बोन,
0: पैर के नीचे की बोन,
1: ये घुटने के से जो नीचे,
0: घुटने के नीचे
1: हाँ।
0: तो लोग टेढ़ापन भी लेके आते हैं, और दर्द भी और सूजन भी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि और टेढ़ा हो गया और दर्द बहुत बढ़ गया, एक्सरे कराओ तो पता चला।

0: उसमें हड्डी क्रैक दिखाई देती है। दूसरी चीज है, लोग अक्सर गिर जाते हैं बुढ़ौती में, जैसे गिरे जरा सा कलाई की हड्डी टूट गई, ऑस्टियोपोरोसिस है, कमजोर है हड्डी, थोड़ा सा बल पड़ा तो टूट गई।
1: जी डॉक्टर साहब, आपको हम थोड़ा सा बीच में रोकेंगे, उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी
1: हेलो।
2: हाँ साहब
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
2: हमारा नाम दुखरम नाथ मिश्रा है साहब, 72 साल की उम्र है, हमारा पैर थोड़ा जाम रहता है साहब, जाम रहता है, और सरकारी डॉक्टर के पास गवा रहे हैं, वो कैल्शियम दे बाटे, कैल्शियम का दवाई दें, कहीं खाओ जैसे आराम होगा।
0: अच्छा, तो आपके घुटने में दर्द होता है, हमें लगता है घुटने के जोड़ में
2: दर्द, कुछ नहीं साहब, जाम बाटा दिनों पर जाम हो जाता अपने आप। कौन चीज खाएं जिससे रोटी खाएं चावल खाएं, कौन चीज खाएं जिससे आराम ना?
0: आप साधारण दाल चावल रोटी सब्जी जो भी पसंद करते हैं आप खाइए, खाने से अच्छा, उसके जाम में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें धीरे धीरे घिसन हो रही है और चिकनाई कम हो रही है।
2: अच्छा साहब,
0: इसकी वजह से जाम होता है और सुबह ज्यादा जाम रहता है, जब थोड़ा सा चला वाला लेते हैं आप तो आराम हो जाता है।
2: हाँ आराम हो जाता
0: है। तो आपको गठिया है, इसके लिए आप अपने पास के चिकित्सक को दिखाइए और जो भी दवाई डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं आप उसको लीजिए।
2: हाँ डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की दवाई दे, कहीं खाओ तो आराम होगा धीरे।
0: ठीक है, अच्छा किए हैं। नमस्ते
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुखनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर लक्षण पे हम बात कर रहे थे।
0: जी तो इस तरह से होता है कि तमाम टाइम ऑस्टियोपोरोसिस पहले से डिटेक्टेड नहीं होता,
1: जब हड्डी कोई टूटती है उसके बाद ही लोग आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे, आपने बताया ना दर्द होता है, तो दर्द पूरे शरीर में होगा या कुछ किसी पर्टिकुलर, जैसे हाथ की हड्डियां हैं या पैर की हड्डियां हैं?
0: ऑस्टियोपोरोसिस में जनरलाइज्ड पेन जल्दी से नहीं होता, पूरे शरीर में दर्द नहीं होता।
1: अच्छा,
0: दर्द लोकलाइज्ड होता है, अक्सर वहां होता है जहां की हड्डी क्रैक हो चुकी होती है किन्हीं भी कारणों से, चोट, वेट, ट्विस्टिंग, स्ट्रेन, किसी भी तरह से होने पर जब हड्डी क्रैक हो जाती है तभी उसमें दर्द शुरू होता है।
1: जी, ये क्रैक की वजह से केवल दर्द होता है, चलने फिरने में ऐसा नहीं होता है कि इंसान एकदम बैठ जाए?
0: नहीं, वो डिपेंड करता है, अगर माइनर क्रैक है तो आदमी दर्द के साथ चलता रहता है
1: जी,
0: अगर कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया तो पैर टेढ़ा हो जाएगा, आदमी का चलना बंद हो जाएगा
1: जी,
0: या गिर जाएगा, हड्डी डिफॉर्म हो जाएगी, डिपेंड। माइनर फ्रैक्चर रहता है तो आदमी चलता रहता है
1: जी। कौन सी ऐसी जांचें हैं, पैथोलॉजिकल जांचें, जिससे पता लगेगा इसके विषय की इसके गंभीरता के बारे में?
0: देखिए, कॉमन जांचें दो हैं जो हम लोग अक्सर कराते हैं। एक तो ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस साधारण एक्सरे देख के पता चल जाता है कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है
1: जी,
0: लेकिन साधारण एक्सरे की जांच क्वांटिटेटिव ऑस्टियोपोरोसिस डिफाइन नहीं कर पाती। उसके लिए एक होता है डेक्सा, डुअल इनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री
1: जी,
0: डेक्सा। इस जांच से ये पता चलता है कि कितनी ऑस्टियोपोरोसिस है
1: जी,
0: कुछ डिफाइंड पॉइंट्स हैं बॉडी के, उन जगहों पर जांच करके एक वो कॉमन बोन वीकनेस निकालते हैं
1: जी,
0: और जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और टी स्कोर और जेड स्कोर निकालते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, हम अपनी इस जांच के बारे में और भी अधिक बातचीत करेंगे, उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, नाम बता दें फिर समस्या बताएं।
3: रामदयाल दास मेरा नाम है, 84 बरस उम्र हो गया
1: जी। रामदयाल जी
3: 84 साल का उम्र हो गया, थोड़ा आग लग गैस से जल गए थे, करीब जनवरी में जले थे, अभी पैर जो है थोड़ा सा जख्म है, पैर ऐसे चिंगड़ जा रहा है, पसारा नहीं जाता है, इधर से हो रहा है।
0: अच्छा, तो महाराज जी हमें लग रहा है कि जनवरी से जो जले का जख्म है चमड़ी सिकुड़ गई है, और
3: चमड़ी सिकुड़ा नहीं है, चमड़ी तो सब ठीक है,
0: और घाव अभी पूरा भरा नहीं है,
3: अभी पंडित हो रहा है, थोड़ा सा जख्म है, 3 इंच जख्म है अभी, 3 इंच।
0: तो ऐसा है कि इसको प्लास्टिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा, हो सकता है ऑपरेशन करके वो घाव भरने में ज्यादा बेहतर मदद कर पाए।
3: घाव तो भर गया महाराज, बहुत जनवरी में जले हुए थे, और ये समझ लीजिए कि अब उम्र 84 का है, और समझ लीजिए कि अब ऐसे पसारने में बहुत दर्द करता है, टिकाने लगता है, बिल्कुल बुझाता है कि कितना दूर से चले हम आया, ऐसा हो रहा है।
0: तो किसी आसपास के

0: मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में शिक्षित चिकित्सक लोग हैं वहाँ, मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में आप दिखा दीजिए, डॉक्टर साहब लोग हैं वहाँ, देख के आपको इलाज बताएंगे।
1: दर्शन नगर में
0: जी।
1: अच्छा ठीक है, सीताराम,
0: जय सीताराम,
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी। हम अपने सभी श्रोताओं को एक बार बता दें कि हम अपने कार्यक्रम में लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं, कार्यक्रम चल रहा है, सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, विषय है ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी, आप वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं अयोध्या में। डॉक्टर साहब, जो जांच की आप बात कर रहे थे, क्या इसकी उपलब्धता सभी शहरों में है या बड़े शहरों में जाना पड़ेगा?
0: अभी अपने अयोध्या में इसकी उपलब्धता नहीं है।
2: ओ,
0: ये जांच करवाने के लिए हमें मरीज लखनऊ भेजना पड़ता है, लेकिन हमें आशा है शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी ये जांच।
2: जी, कहीं भी नहीं है, सरकारी में या प्राइवेट में?
0: कहीं भी नहीं है
2: जी।
0: लेकिन ये जांच यूजुअली तो एक्सरे में दिखाई दे जाता है, ये जांच करके डिफाइन कर देना बहुत आवश्यक नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है एक्सरे में, तो ट्रीटमेंट देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि मरीज को इधर से उधर जांच के लिए भगाते रहने से।
2: जी, ट्रीटमेंट की बात हम लोग करें अगर, तो उपचार क्या है इसका?
0: उपचार बेसिकली हमें रोग के कारण पर जाना चाहिए कि रोग उत्पन्न क्यों हुआ है।
2: जी जी बिल्कुल।
0: अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, भोजन की कमी है, तो भोज्य पदार्थों को ऐसे दिए जाएं जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो।
2: जी, एक चीज जानना चाहूंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस लेके बीमारी डॉक्टर के पास पहुंचा पेशेंट, तो ये डॉक्टर कैसे जान पाएगा कि ये कौन सी वाली वजह से है?
0: जी, तो इससे संपूर्ण हिस्ट्री लेना पड़ता है मरीज की।
2: जी जी जी।
0: भोजन, खाने पीने, कार्य और हर चीज की हिस्ट्री लेना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये एक्सरसाइज कम करने से है, भोजन की कमी से है कि क्या है, और उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना है।
2: जी।
0: तो अगर भोजन की कमी से है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी देना पड़ेगा, प्रोटीन के प्रिपरेशंस देने पड़ेंगे, एमिनो एसिड्स के प्रिपरेशंस देने पड़ेंगे। अगर कोई दूसरा कारण है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है या पैराथायराइड ट्यूमर है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल माइलोमा है तो उसका उपचार करना पड़ेगा। कोई मेडिसिन चल रही है, स्टीरॉयड चल रही है, तो उसको बंद करना पड़ेगा।
2: जी,
0: तो इस टाइप से इसका उपचार होगा।
2: जी,
0: एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा।
2: जी, उपचार पे और भी बातचीत करेंगे, उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो
0: जी,
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मैम, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
3: जी मैं सभाजीत, मेरा नाम है सभाजीत, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ।
2: जी बताइए।
3: डॉक्टर नगर से। मैम मैं हाथ में चोट लग गई थी।
2: जी जी
3: मैडम, ये कभी कभी दर्द करता है अभी।
2: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हाथ में
0: चोट लग गई थी, दर्द करता है।
3: जी जी।
0: तो आप तो दर्शन नगर में है, मेडिकल कॉलेज आपके पास में है, वहाँ पर अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, दिखा के जरा एक्सरे वगैरह करवा के चेक करवा लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ्रैक्चर वगैरह रहा हो और पड़ा रह गया हो।
3: जी
2: जी,
0: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब। जी उपचार की हम बात कर रहे थे
0: जी।
2: तो उपचार जो भी आपने बताया था अभी, इतने सारे प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेनाइल है या लोकलाइज्ड है, जनरलाइज्ड है, तो दवाएं भी क्या उसी हिसाब से होंगी और ड्यूरेशन भी उनका उसी हिसाब से होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, दवाएं उसी हिसाब से होंगी, ड्यूरेशन भी उसी हिसाब से होगा। अब हम चलने के पहले एक चीज बताना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है
2: जी,
0: कि गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट एंड बैलेंस्ड एक्सरसाइज,
2: जी
0: ये तीन चीजें ऐसी हैं, बैलेंस्ड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया टाइप की बीमारियों से बचाती हैं। उसके साथ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के बचाव के लिए अगर कोई बीमारी है साथ में एसोसिएटेड, तो उसका ट्रीटमेंट ही ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है।
2: जी, आधुनिक जीवन शैली में आप क्या सलाह देंगे एक वाक्य में लोगों को कि इस बीमारी से या हड्डी की किसी भी बीमारी से जो न्यूट्रिशन की वजह से है बचे रहें?
0: दो चार चीजें हैं, एक तो हमने जो डाइट बता ही दिया, एक्सरसाइज बता ही दिया, साथ में अल्कोहल कम से कम रखें, स्मोकिंग ना के बराबर, फास्ट फूड, जंक फूड्स अवॉइड करें, घर में उत्पन्न हुए सामानों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, तो बेस्ट रहेगा।
2: जी, हमारे सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और

0: आप तो को बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहायता दी अरविंद कुमार ने और उद्घोषक सदक हुसैन। डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी जी, आप वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ अयोध्या में हैं। आपने हमारे सभी श्रोताओं को ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार पर इतनी विस्तृत रूप में जानकारी दी, उनके सुझाव दिए उनके टेलीफोन पे, तो आपको इसके लिए सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से दीजिए सरस्वती पाठक को अनुमति। नमस्कार।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आपको याद दिला दें कि आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए महफिल गजल, और रात 9:30 से 10:30 तक का वक्त होगा खास आपके लिए, होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या को, अपने प्यारे स्टेशन FM आकाशवाणी को।

यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन

0: चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। AFC अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier, addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion US.

प्रोग्राम शाम सुहानी में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। पहला गाना है फिल्म सुखी से, सचेत टंडन की आवाज है। गीत लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत आरकू का।

0: प्रोग्राम शाम शिवानी में अगले गीत तक बढ़ने से पहले एक सूचना है गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार रीना पुत्री मंगरू बास गांव कोट डी थाना खंडासा जनपद अयोध्या कोट डी से दिनांक 15 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से कहीं लापता हो गई हैं। गुमशुदा रीना की उम्र 24 वर्ष है, रंग सांवला है, कद इनका 5 फीट 3 इंच है, चेहरा लंबा है, 12वीं तक की शिक्षा है, बालों का रंग काला है और इन्होंने जिस वक्त लापता हुई थी इन्होंने मेहरून रंग की प्लाजो और लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। गुमशुदा रीना पुत्री मंगरू बासगांव कोट डी थाना खंडासा जनपद अयोध्या के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया निकटतम पुलिस चौकी थाना अथवा कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। प्रोग्राम में अगला गीत होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
0: प्रोग्राम शाम सुहानी में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज को फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति, अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासोत्रो भविष्यति। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केंद्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते, सहैव अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मंदिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है,

0: अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत् 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरंतर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेन उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी 1 वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः। तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियंत्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
0: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन 25-उत्तर-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः वीबीजी रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन

0: SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघ गर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनवाते हैं आपको ये पूर्वी गीत शारदा सिन्हा के स्वर में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: कार्यक्रम गूंजे स्वर्गाओं में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, इस समय हमारे विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, स्कूल चलो अभियान चल रहा है। सारे बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो अपने आसपास के सरकारी स्कूल में भी उसको भेज सकते हैं आप। ऐसा ही एक साक्षरता को प्रेरित करने वाला गीत गणेश कुमार सिंह और साथियों के स्वर में आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामप्रीत निषाद।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: पंचो जय हिंद। आज भैया आज हम आपके सामने अपने कार्यक्रम कृषि जगत में यहाँ लेके आवा ही एक बहुत जरूरी उपयोगी चर्चा, सड़क सुरक्षा। अब आपका एक काव्य पाठ सुनावा जाए, खेती किसानी पर आधारित काव्य पाठ। कविवर हैं अशोक टाटंबरी, जो उनकी हनुमत नगर नाका अयोध्या से हैं। और आपका मनोरंजन टाइम एक हम बिरहा सुनूंगा आपका, भरपूर शंकर यादव उनके साथी किशोर मां, आप आनंद लें। फिलहाल आपसे बातचीत में सड़क सुरक्षा का बातचीत है। तो हमें सबका घर से निकल के कहीं भी आवागमन होत है तो यात्रा करे के पड़ता है। तो यात्रा हमें सबका सड़क से भी है, जल मार्ग से भी है, वायु मार्ग से भी है। मुला भैया ज़्यादा कठिन है अपन सड़क पर चलब। काहे से जरा सा कहावत है ना कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये लिए हमें सब सावधान रहा जाए और सावधान रहता ही जागरूक रहता ही आज सड़क सुरक्षा के बारे में हम आपसे हम कुछ महत्वपूर्ण नियम तरीका के बात करे चाहिए थी। बात यह है कि भाई पहले बात तो आपका यात्रा बहुत मंगलमय हो, रास्ता कभी खत्म नहीं होता, चलत रहा था।

वहीं में अपने जीवन के भी यात्रा चलत रहा था। अब हम लोग सब यात्रा करी थी पैदल, गाड़ी से, बाइक से, कार से, स्कूटर से, बस से, ट्रक से, हाँ, जहां पर आपन निगाह काम करत है, अपन दिमाग काम करत है, अपन कौशल काम करत है, अपन बुद्धि विवेक काम करत है। और जब हम सब बस पे यात्री के रूप में बैठ जाई थी तो हुआ तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर साहब जी होते हैं, उनका भी ध्यान देख रहे कि यानी हमारे पीछे हमारे साथ जितना यात्री बैठा है, सवारी बैठा है, उनके जान जोखिम में ना जाए, ये लिए ध्यान दिन जाए कि सड़क सुरक्षा का कहत है, का नियम है, का तरीका है ना। अनाए तो कोतवाल साहब खड़ा रहा थे, आरटीओ ऑफिस से सरकारी महकमा लोग खड़ा रहा थे, बताओ थे भैया सड़क सुरक्षा के ताई आप नियम से तरीका से चलो, है ना भैया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम सब, पहली बात तो अगर बाइक से, बाइक तो आम हो गए भाई, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी तमाम आम हो गए बाटे, तो वहाँ हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। नाबालिग बच्चन का गाड़ी चलाओ न मना कह दें, और जहाँ तक कि अपना जो संज्ञान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वह जो है स्कूटर का, गाड़ी का, उनसे उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएं, अपन जिम्मेदारी है ना। तो यह तरह से तमाम तरह का बात है कि कार, स्कूटर, बस, ट्रक से हम लोग चली थे, चलाई थी, या उससे जनहित का नुकसान भी हो सकता है, दूसरे का नुकसान हो सकता है, यानी स्वतंत्रता आज़ादी वहीं तक काम है जो कि दूसरे का नुकसान न करे, उनका भी फायदा दे, लाभ दे, तो बहुत अच्छी बात बाटे। तो ये लिए हम सब दोपहिया वाहन से ही तो हेलमेट लगाई, चार पहिया वाहन से सीट बेल्ट का प्रयोग की जाए, बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दी जाए कि नशे के री हालत में हम सब कोनो भी गाड़ी, चाहे जोन भी नशा होए, कौन भी गाड़ी न चलावा जाए। अगर नींद आवत है, पूरा नींद में देह मातल है, दो दिन चार दिन जागे हैं, मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, हो सकत है भोजन पानी किए के बाद नींद आवे लागे, तो आप गाड़ी न चलाएं, आराम कर लें, सो लें, नींद भाग जाए, पूरी नींद हो जाए, तब जोन है आप चलाएं। तो ये तरह से अब आगे चली थी रोड पे, तो रोड पे हमें सब ध्यान दी जाए कि अपने बाएं की तरफ बाएं चला जाए, हमारे सब कहीं यहाँ भारत के नियम बाटे कि जो यातायात के कि हम सब अपने बाएं चला जाए, लेकिन ध्यान दी जाए कि सामने सामने जो है कौन लाइट चलत बाटे, अगर चौराहा आएगे बाटे लाल है, हरी है, नीली है, पीली है, क्या तरह का संकेत है, लाल है रुक जाएं, हरी है तो चलें, हैं, और पीली है तो रुक इंतज़ार करें। तो यह तरह से अपन गाड़ी पे चलाएं और एकाएक जंप न करें, और जगह जगह रोड पर ब्रेकर बना रहा था, ये लिए कि आप अपन गति सामान्य करें, धीमी करें, है ना। तो यह तरह पे जगह जगह से अंकित रहा था निशान, यातायात के चिन्ह बना रहा था, लिखा रहा था, ब्रेक बना रहा था, तो वहाँ पर भी हमें सबके ध्यान देख जरूरत है। कहीं कहीं यूँ लिखा रहा था कि निर्धारित सीमित गति सीमा से चलें, यानी कि गति सीमा भी का ध्यान दें कि कहाँ भीड़ भाड़ है या खतरा वाला स्थान है, ज़्यादा मोड़ है, तो वहाँ हमें सब जो है बहुत संतुलित, बहुत नियमित संयम के साथ गाड़ी के चलाई। बात यह कि जमाना जो है इंटरनेट के बात है, तो तमाम लोग मोबाइल से जुड़ा है, तो मोबाइल से बात भी करत रहते हैं और गाड़ी चलावत रहते हैं, बहुत ही गलत बात बात है। अगर कोनो खतरा हो गए तो उसके भरपाई बड़ा मुश्किल है, काहे से भैया आप सब जानत हो कि शरीर में अगर फोड़ा हो जाते ना तो चमड़ी में दाग पड़ जाते, फिर चमड़ा अपने पूर्वत जैसन निखार नहीं रह जाता, ये लिए ध्यान दें कि अपन शरीर बहुमूल्य ही नहीं अमूल्य है, अपन

0: सुरक्षा पूरी तरह से करें और अपने आपके सुरक्षा, अगर आप सुरक्षित रहें तो आपके घर परिवार बाल गोपाल नात बात रिश्तेदार हित दोस्त सब का आप ध्यान रख सकत हो। ये ले भैया, ट्रैफिक लाइट सड़क सुरक्षा जौन संकेत राहत हैं सड़क के किनारे लिखा रहता है वह का सम्मान करें, वह का ध्यान दें, जाम की स्थिति में धैर्य रखें, है ना, ज़्यादा है तो किनारे गाड़ी बंद कर दें। हाँ, ध्यान दें कि अगर गाड़ी में पॉल्यूशन सही नहीं बांटे, यानी कि गाड़ी से जो धुआं निकलत है उत्सर्जन होत है, बहुत ज़्यादा काला धुआं है, प्रदूषित है, तो वह का आप जल्द से जल्द ठीक करावें। और चौराहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है, तो अपने पैदल यात्री का, असहाय व्यक्ति का, मरीज का पहले जाए के अवसर दें अपने गंतव्य स्थान पर। ये लिए एम्बुलेंस पर लिखा रहता है ना, एम्बुलेंस के सामने पड़े से तो भी पता चल जाए, शीघ्र पता चल जाए, जल्दी समय सबका ध्यान आकर्षण हो जाए कि यह एम्बुलेंस बांटे। तो हमें सब यह तरह से चली, आगे भी चली तो पीछे साइड शीशा लगा रहा था कि पीछे से कौन सवारी आवत बाटे, कौन गाड़ी आवत बाटे, वह कभी जरा ध्यान दे के चला जाए, उचित दूरी बनाए रखा जाए, नहीं तो यह अचानक या का एक ब्रेक लगाए से गाड़ी लड़ सकत है, बड़ी दुर्घटना हो सकत है। जानवर मवेशी के स्वतंत्रता पर, उनके जीवन पर भी ध्यान आप दें। तो यह तरह से गाड़ी अपने दिशा में चलावें, अपने सही रास्ता पर चलावें। और हाँ, कागजात अपन दुरुस्त रखें, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस कागज और पॉल्यूशन RC जैसे सर्टिफिकेट आप जरूर अपने साथ रखें। तो भैया, यही के साथे साथे हम आगे बढ़ी थे और आप सबका एक खेती किसानी पर आधारित काव्य पाठ आपका सुनवाई थे, सुने ध्यान से, जौन है अशोक टाटंबरी जी।
1: किसान भाइयों, आज हम आपके लिए आकाशवाणी के द्वारा एक अवधि में जागरण गीत प्रस्तुत कर रहे हैं।

भैया, जैसे सीमवा पे जागा है जवान भैया। खेते के चारुवारी जंगली जनावर भारी, खेते के चारुवारी जंगली जनावर भारी। तहस नहस कीना चाहत हैं खेतन की हरियारी, तहस नहस।

चोरी चोरी घुस के मुसवै चाल रहे हैं माटी, चोरी चोरी घुस के मुसवै चाल रहे हैं माटी। घात लगाए खड़े भेड़िए खुरचत बाटे माटी, घात लगाए खड़े भेड़िए खुरचत बाटे।

बांधे, आओ हम अपने भारत का एक सूत माँ बांधे, आओ हम अपने भारत का एक सूत माँ बांधे। अरे गूंज उठे जय जवान।

पी सहना और अपना पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस पर एक गीत प्रस्तुत है। स्वच्छ पर्यावरण बनाई चलो सब पेड़ लगाई, स्वच्छ पर्यावरण बनाई चलो सब पेड़ लगाई, बनव

दाता प्राण वायु अष्टयाम है। तुलसी त्रिदोष नाश चढ़ी शालिग्राम है। तुलसी त्रिदोष नाश चढ़ी

परमात्मा अमूल योगदान है, धरा संतुलन माँ अमूल्य योगदान है, नदिया किनारे पेड़ रोक

0: लगाई। जय हिंद जय भारत।
1: सुनत हिल सखी सुनत हे कार्यक्रम अंगना मा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
5: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
4: नहीं मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
5: अच्छा वेरी स्मार्ट।
6: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने?

0: और ले जाएं वहाँ से सामान।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
0: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: भैया आप काव्य पाठ सुन लियो, अब हम चली थे आपके मनोरंजन के तरफ, जो उनकी कह रहन वादा के रहन की विराह है, तो विराह शंकर यादव उनके साथी के स्वर में आप सुनो।
5: अरे नवेली नार नहीं हर, नवेली नार नहीं हर, नवेली

और कप्तान वाली कहती किसान वाली के कि तोहरा सैया साज सवेरे, अरे तो तोरा सैया साज सवेरे, अरे घूमत तो हुई है डाड़े मेरे नवेली नार नैहर में आई। और कहत कहे कि तुहार पति क्या करते होंगे, अरे घस

0: इतनी बात सुनत किसान की बीवी तनी आ गेल अपने पानी पर और का कहला का सुना, तुहार पति तुहरे जोग, हमार पति हमरे जोग, एमे घमन कोने बात कहे। लेकिन भैया जेकर पति कप्तान ओकर बात नहीं वाला कुछ। हाँ भैया तो सुना, किसान वाली का कहती है, किसान वाली कहती है कप्तान वाली के, तू सुना अब ले हम सुनिए, तू सुना। अरे जब तू के कलेक्टर, अरे जब तू के कलेक्टर, अरे कप्तान मिलल है,
1: अरे जीव जीव
0: जब तू के कलेक्टर,

वो महकमा में खाना पीना और टाइम से ना मिलत। हमार पति अध्यक्ष मनवा रही है तो का हुई। अरे भूख लगी दुल्हा के, अरे भूख लगी सैया के, अरे लपसी चटैबे, भूख लगी सैया के, अरे घोर के लपसी चटैबे, लेकिन होटलिया में खा का। अरे की जब तुह के कलेक्टर का पता न मिलल है।

0: कहले अरे हमार सखी तोहे यही पे घमंड बाय कि घूमत बा तू 35,000 वाली कार में आ हमारी किसनवा के हमारी बलमुआ के कम मत समझा वो ट्रैक्टर खरीद ले बस 70,000 कहले हमारी बलमुआ के कम मत समझा वो ट्रैक्टर खरीद ले बस 70,000 में आ कहले कि तुहार बलमुआ 35,000 पे घमंड करन चढ़न दौड़न है हमारे पास 70,000 के ट्रैक्टर है हमारा बलमुआ कब ऊपर चढ़ते ना हमारा बलमुआ ट्रैक्टर खरीद ले बस 70,000 में और का कहले अरे कि जब नोट का गड्डी
1: अरे जीजू
0: आपके पति कप्तान है अरे जब नोट

ए भैया और किसान वाली कहला कप्तान वाली से अपने सहेली से कहले कि तुहरे बलमुआ के पहरा पड़ेला। कहे कि भाई जिला के मालिक हूँ, तुहरी बलमुआ पे पहरा पड़ेला, पहरा के देले बंदूकधारी चौकीदार और सिपाही। लेकिन ए सखी हमारी बलमुआ के गौवा के लगवा सब घेरले रहे हरे हरवाही। और का कहले अरे

ए भैया, आप शंकर यादव उनके साथ है किशोर में, आप बिरहा का आनंद लियो। आए देखो, ये खेती किसानी से संबंधित रही, गांव गिराव से संबंधित रही। अब हम चलित है कि जो आपके जो जनपद अयोध्या मंडी से जो थोक बाजार भाव बाटे वो का बता दी आप सबका, कि चावल 3,060 रुपया, गेहूँ 2,585 रुपया, मक्का पीली 2,385 रुपया, उड़द काली 8,980 रुपया, चना देसी 6,330 रुपया, मसूर 6,900 रुपया, अरहर दाल 10,900 रुपया, आलू सफ़ेद 695 रुपया, प्याज लाल 1,295 रुपया, टमाटर 1,700 रुपया, लहसुन 6,800 रुपया, तरोई 2,400 रुपया, खीरा 1,650 रुपया, बैगन 2,260 रुपया, हरी मिर्च 3,000 रुपया, कद्दू 1,400 रुपया, और अदरक 5,100 रुपया, शिमला मिर्च 2,600 रुपया, भिंडी 1,950 रुपया, लौकी 1,580 रुपया।

रुपया, करेला 2100 भैया, और केला पक्का 2500 रुपया, करेला जो है 1295 रुपया, नींबू 9600 रुपया, पपीता 2500 रुपया, सेब 10950 रुपया, और अनार 8200 रुपया, गुड़बट्टी 4900 रुपया, और चीनी 4150 रुपया। अब लगे हाथ आप सबका मौसम का हाल बताए दिन जाए कि तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सामान्य से 2.3 कम रहा, लेकिन तापमान जो न्यूनतम बाटे 26 अंश सेंटीग्रेड, जो कि सामान्य से 2.9 ज़्यादा बाटे, सापेक्षिक आर्द्रता जो 85% रही, न्यूनतम जो है 86% रही, हवा गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही, दिशा दक्षिण और पूर्वीय रही। अनुमान है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छावा रहे और

इस घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छावा रहे और वर्षा की संभावना नहीं बाटे और औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे। हवा सामान्य व सामान्य से तेज गति से पूर्वा पछुआ चले का आसार बाटे। और भैया अब काल के कार्यक्रम आप सबको बता दें कि अगले दिन जो किसानवाणी कृषक महिला दिवस बाटे तो गर्मियों के ठंडे पेय पदार्थ चर्चा रहे और भेंटवार्ता रहे। किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाएं डॉक्टर स्नेहा सिंह से और इनसे मंजू मौर्य अभी बात करिए यही जानकारी के साथ। भैया फिर नेक बात बत की जानकारी गौनाई के साथ मिला जाए, तब तक गोवर्धन भैया की अनुमति दो। जय हिंद।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 7:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए आपको आज के शेष और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप रूप से बता दें। आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर महफिल गजल और रात 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा दैनिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर होगा 7376-8040-90। और अब आपको कल के कार्यक्रमों से अवगत करा दें। कल सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 पर सुर संगम और 8:30 से प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसी कार्यक्रम में कवि डॉक्टर मनमोहन सरकार का समसामयिक काव्य पाठ आप सुनेंगे। अयोध्या की स्थानीय खबरें होंगी, फिल्मी गीत होंगे इस कार्यक्रम में। सुबह 9:00 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत स्टूडियो से होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। सुबह 9:30 से हमारे स्टूडियो से दोपहर 1:00 से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और दिन में 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 2:30 पर नारी जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा पौधों की सेहत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में प्रारंभिक 6 महीनों का महत्व पर जानकारी देंगी कुसुम लता मौर्य। आकाशवाणी अयोध्या की नियमित श्रोता जया रावत से सरस्वती पाठक के बाद भी इस कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी, साथ ही साथ सौंदर्य संबंधी टिप्स भी दिए जाएंगे। शाम 5:00 से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। मौर्यकालीन स्थापत्य पर बात होगी, खास सेगमेंट भारतीय इतिहास में अत्यधिक गर्मी में नियोक्ता क्या करें। फिल्मी गीत और चक्रव्यूह का प्रसारण शाम 5:30 से लोक संगीत, 6:10 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी, 6:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, 6:45 का वक्त होगा किसान वाणी का जिसमें चर्चा होगी गर्मियों के ठंडे पेय पदार्थ के बारे में। किसान बहने अचार मुरब्बा बनाकर लाभ कमाएं इस विषय पर डॉक्टर स्नेहा सिंह से बात करेंगी मंजू मौर्य। बाजार भाव और मौसम का हाल होगा इस प्रोग्राम में। रात 8:15 पर सुनिएगा गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, बिल्कुल आज की तरह। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे
1: और छोटी, ये तुम्हारे ना,
2: और ये
1: मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी,
1: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या?
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नए रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
8: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है, और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
7: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
9: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: कॉन्फ्रेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
1: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी नैक और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
3: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय

0: वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशगर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी नई रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बुलबुल की तक गया। क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र, जहां अब से लेकर रात्रि 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। और ठीक 8:15 से स्टूडियो से होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। फिलहाल सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

आप सुन रहे कुमार सानू को आपके साथ साथ देंगी साधना सरगम। फिल्म है दीवाना। नदीम श्रवण के संगीतबद्ध के इस गीत की धुन किस गीत को लिखा है समीर ने।

0: ये थे कुमार सानू और साधना सरगम फिल्म दीवाना में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म माशूक में। रचना गौहर कानपुरी की, संगीत श्याम सुरेंद्र का।

0: смертилки, сват. स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दिलीप साहब, आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जिजीविषा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं?
2: जी, ये टेक्नोलॉजी में तो सब बाहर हो गए, अभी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं। उनको मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो 90s का जो प्रवास है अपना।
1: अच्छा, आकाशवाणी का जी।
2: उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी।
1: हा, हा।
2: उसमें सारी बातें मैंने रखी थी उसमें। और वो डॉक्यूमेंट्री रंगभवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गया, आज डिजिटल तक आ गए ये सारी। इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का काम करो, ऐसी अभी बातें रही
1: हैं।
2: हर एक को हर एक काम करना है तो ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन विविध भारती ले रहे थे, स्टाफ का प्रॉब्लम था वहां पे। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है मैंने, खाना खाने के भी घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसने पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी, मुंबई के अलग के जो वसई गांव है वहां की थी। उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर, तो मैंने उसको फोन किया, ये साइंटिस्ट है उसका नंबर मिलेगा क्या? वो यूएस में थी, अमेरिका में थी, तो उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया। फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया यहाँ, जिसने पहले वैक्सीन निकाला जो टीम में थी, साइंटिस्ट के टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विद भारती में हुआ था कोविड के टाइम में। वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की थी वो सारी।
1: अच्छा, हाँ।
2: फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई यूएस में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो फंस गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, वो उनके जो पिता थे वो लड़की के, वो श्रीलंका में फंस गए थे, उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है वहां फंस गई थी, और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कांटेक्ट सिर्फ फोन से होता था।
1: बहुत बड़ी बात।
2: और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था, ग्रुप रिकॉर्डिंग की थी। फिर
1: जी जी, ये बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहे होंगे उस समय कोविड काल में, जब हम बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया, बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में।
2: जी हाँ, तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही नहीं।
1: हाँ, ये सबसे बड़ी भावना है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य हैं, और चाहे हम कार्यक्रम में का विभाग में हैं और चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने हैं।
2: हमने गोल्डन जुबली किया था, 60 साल पूरे हुए थे विविध भारती के।

0: तभी एक थीम थी विविध भारती की, जल स्थल और वायु। तो उसमें हमने नेवी, बीएसएफ और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो पुरानी विक्रांत थी वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे, वहाँ बीएसएफ की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज, वहाँ हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वहाँ भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहाँ की नहीं चलती थी। तो हमने वहाँ भी कुछ जुगाड़ करके, देसी जुगाड़ करके हमने रिकॉर्डिंग की थी वो टाइम की। वो टाइम के तो किससे अलग ही
1: मतलब शो मस्ट गो
0: ऑन, या
1: वो चलते रहना चाहिए किसी भी तरह से हो।
0: एक मैंने प्रोग्राम किया था आजादी का अमृत महोत्सव, हम फिल्म डिवीजन गए थे और वहां से वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ था।
1: दिलीप साहब जी, आप अपनी बातों से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी की दुनिया को कायम किया गया और आज कहाँ पहुंच गई है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी का जो मोटो है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यूनिटी, इसके आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है
1: जी।
0: जैसे 99% लोगों को तक रीच है आकाशवाणी की और आज विश्व में तो ऐप के द्वारा सब जगह जुड़ी गई है। और 90 साल में जो देखा जाए ना, एक इंस्टीट्यूट मैच्योर्ड होती है, पीछे से जो चलते आ रहे हैं वो आगे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अभी के जो लोग हैं उनके हाथों में है, वो जो गौरव है, वो जो रिस्पेक्ट है अभी तक बरकरार रखना, ये लोगों के हाथ में है। और मुझे लगता है ये लोग बहुत तरह से, अच्छी तरह से निभा रहे हैं ये। और आकाशवाणी का तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये लोगों की भी है
1: जी,
0: लोगों के मन में अभी तक आकाशवाणी है। वो विविध भारती तो है, पॉपुलर तो है ही सारे विश्व में,
1: विविध भारती तो जीवन संगीत के रूप में जुड़ा हुआ है और लेकिन हर आकाशवाणी से जो है आम जनता जुड़ी हुई है और उनके जीवन का एक आधार बन गया है आकाशवाणी।
0: विविध भारती की एक विशेषता एक है, वो डिफरेंस बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बाकी जो चैनल्स है, प्राइमरी चैनल्स है या लोकल चैनल्स है, उनमें क्या प्रोग्राम की वैरायटीज होती है
1: जी।
0: युवाओं के लिए प्रोग्राम है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या कोई है साहित्यिकों के लिए है, या कृषि प्रोग्राम्स है, या लोकल कुछ प्रोग्राम्स है, वो रहते हैं, बहुत वैरायटीज है उनके पास। विविध भारती में ऐसे नहीं है। अब ठीक तरह से देखा जाए ये मोनोटोनस प्रोग्राम है, इंटरव्यू है, थोड़ी बातें होगी, गाना बज गया। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हुए भी, एक मोनोटोनस प्रोग्राम होते हुए विविध भारती की पॉपुलैरिटी इसलिए है, यहाँ क्रिएटिविटी है
1: जी।
0: प्रोग्राम एक ही टाइप का है, हाँ। लेकिन वो क्रिएटिव बनाना है,
1: इसको प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग हैं,
0: अलग है।
1: जो प्रसारण करता है, जो अधिकारी गण है, उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करते हैं, तो वो एक वैरायटी के रूप में आ जाता है। तो आप तकनीकी विभाग में तो थे ही, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक सहायक निदेशक के रूप में भी आपने काम किया है, क्या भूमिका रही सहायक निदेशक के रूप में, आपने आकाशवाणी को किस तरह से जिया?
0: प्रमोशन में मेरी ट्रांसफर हो गई वो पश्चिम क्षेत्र में, पूरा पश्चिम क्षेत्र 5 राज्यों का है, उसमें मुझे प्रशासन का काम दिया गया था और वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था स्टेशन और डायरेक्टरेट, उनके बीच का जो जो मिडल मैन रहता है वो जोनल ऑफिस रहता है, और जो यहाँ की बातें दिल्ली तक पहुँचाना, दिल्ली की बातें वहाँ तक पहुँचना, वो जो पूरा चेन है, चेन बरकरार रखना और सारी बातें स्टेशन ठीक तरह से करता है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना।
1: लेकिन जैसा कि आपका मन एक कलाकारी मन है, हमने आपसे बातचीत में पाया कि आप कला में ज्यादा रुचि लेते रहे, तो कला से होते हुए प्रशासन तक जो ये सफर रहा, कैसे मन को समझाया होगा? क्योंकि जब आप यहाँ थे तो आपने तकनीकी विभाग भी संभाला और साथ में प्रोग्राम साइड में भी आपका हस्तक्षेप रहा, लेकिन चूंकि सहायक निदेशक के रूप में एक प्रशासनिक काम ज्यादा हो गया, उसमें एक अलग रूखापन आ जाता है काम में और जिम्मेदारी अलग किस्म की आ जाती है, तो किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा?
0: बुरा तो लगा यहाँ से जाते समय
1: जी,
0: विविध भारती में 33 साल थे और यहाँ का एक केबल एक इक्विपमेंट सारा मैंने इंस्टॉल किया था, तो थोड़ा लगाव था इससे, तो जाते समय बुरा तो लगा, लेकिन एक था ना, एक लोकल स्टेशन छोड़ के मैं जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी खुशी भी थी वहां काम कर रहा हूँ। प्रशासन का तो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कठुआ में था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में था।
1: अच्छा।

0: तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तभी 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया था, तो वहाँ प्रशासन का काम था मुझे, क्योंकि मैं ही इंजीनियरिंग हेड था वहाँ पे, तो वो थोड़ा अनुभव था मुझे, वो थोड़ा अनुभव वहाँ काम आया, लेकिन वो स्टेशन का काम था और ये पूरा जोन का काम था, पूरा क्षेत्र का काम था।
1: लेकिन आपने इसे भी बहुत ही बखूबी निभाया,
0: ऐसे मेरे वरिष्ठ तो बोलते हैं।
1: नहीं, हमने भी आपके बारे में जाना और सुना, तो पता चला कि दिलीप कुलकर्णी साहब वहाँ पर भी काम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। तो सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग और निजी FM चैनल्स के दौर में आकाशवाणी आज भी प्रासंगिक है, जबकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर हजार बातें कही गई, हजार तरीके से कहा गया, लेकिन आकाशवाणी कहीं डगमगाया नहीं। तो आज डिजिटल रेडियो, न्यूज ऑन AIR एप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब की उपस्थिति, FM के अलावा पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: एक किस्सा बताता हूं मैं। ऋषि कपूर जी के हम घर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ऋषि कपूर जी ने उनका अनुभव बताया था।
1: जी,
0: जब भी शूटिंग में जाता हूँ, कार से जाता हूँ, मैं प्राइवेट चैनल FM चैनल में ट्यून करता हूँ, और उनकी बकबक सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, मैं फिर से विविध भारती पे आ जाता हूँ, और वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है।
1: जी।
0: जो आकाशवाणी के मैं कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे मालूम रहता है, ये ऋषि कपूर जी ने बताया था कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आने वाला है, और उनके उद्घोषों का नाम उनको पता था।
1: अच्छा।
0: तो ये जो बड़े स्टार जो बता रहे हैं, वो भी विविध भारती सुन रहे, आकाशवाणी सुन रहे, तो आकाशवाणी तो रहेगी, आकाशवाणी तो डिजिटल आने जो पॉडकास्टिंग आने दो, हमें यहाँ रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: और एक अच्छा बदलाव है ये,
1: यानी कोई भी चीजें आती हैं जैसे जैसे, हमें उसको अपनाना भी होगा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आज आकाशवाणी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है, जिसके लिए हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का प्रभाव है, आप उसे कैसे देखते हैं?
0: कुछ लोग बोलते हैं अभी नया जनरेशन है, जेन जी है, वो आकाशवाणी की तरफ नहीं आ रहा है।
1: जी,
0: अभी उनको अपनी तरफ खींचना अभी अपना ही काम है, वो क्या लाइक करते क्या डिसलाइक करते वो देखना पड़ेगा हमें, और उसी तरफ से हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी फॉर एवर रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेगा कि हमने मैग्नेटिक टेप पे प्रोग्राम बनाए फिर डिलीट हो गए, वो टेप दूसरे प्रोग्राम के लिए यूज किए, ऐसा नहीं होगा। हमारे अभी प्रोग्राम सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और ये बदलाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस लोग पीछे मुड़ के जाते हैं। आज भी गुरुदत्त जी को ये लोग याद कर रहे हैं, राज कपूर जी को कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनके रिमिक्स बन रहे हैं, नए गानों के तो रिमिक्स नहीं बन रहे हैं।
1: और आज भी हम जितने समारोह देखते हैं, वहाँ पर पुराने गाने ही गाए जाते हैं, ज्यादातर पुराना फैशन लौट कर आ रहा है, यानी सब कुछ लौट रहा है।
0: जो प्योरिटी हो तो रहेगी।
1: जी, जैसे कि वेदों की ओर लौटो कहा गया, तो ये इसीलिए कहा गया, और ये जो वापस लौटना है, ये यही इंगित कर रहा है कि सब कुछ लौटेगा।
0: जी जी।
1: तो दिलीप साहब, आपसे इतनी सारी बातें हमने की हैं, चलते चलाते आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहेंगे।
0: एक गीत हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो टाइम मल्टी ट्रैक फैसिलिटी नहीं थी।
1: जी।
0: और 40 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग की थी हमने यहाँ पे, इसी स्टूडियो में की थी।
1: अच्छा सर।
0: फीमेल कोरस, मेल कोरस, पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पाटेकर म्यूजिक डायरेक्टर थे, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग की, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन 3 दिन तक चला।
1: अच्छा।
0: वो 40 ट्रैक सब स्टूडियो में कन्वर्ट करने थे।
1: बहुत खूब।
0: तो मिलिन इंगले जी मेल वॉइस थी, और बेला शिंदे जी फीमेल वॉइस थी।
1: जी।
0: तो वहाँ हम रात यहाँ 2-2 बजे तक यहाँ स्टूडियो में रुकते थे।
1: जी।
0: बीच में बाहर जाके कभी 12-1 बजे बाहर जाते थे चाय पीने के लिए, तो वो टाइम साइकिल पे चाय आती थी केटल में।
1: अच्छा।
0: आज भी घूमते हो रात को 12 बजे के बाद, तो हम चाय पी के वापस स्टूडियो में आते थे। वो गाना है मैं हूँ विविध भारती।
1: अरे वाह। जी।
0: और वो गोल्डन जुबली के लिए बनाया था, लेकिन वो फॉर एवर गाना है, और विविध भारती के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं गाना, मैं हूँ विविध भारती।
1: अरे वाह। चलिए, तो हम सुनते हैं ये गीत जिसे आपने 40 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, और वो एक अभूतपूर्व कार्य था उस समय का, तो और हम भी इस गाने को सुनना पसंद करेंगे।

0: दिलीप साहब, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमने की आकाशवाणी के इस 90 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती को दिया।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर।

दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने।

0: और सुनो आया, शीशी वाली दवाई चार चार घंटे पर देना, एक खुराक अभी दे देना, और पाउडर के लिए समझ गई ना?
1: जी हाँ।
0: वक्त से दे देना, अभी टेम्परेचर है उसे।
1: बहुत अच्छा बहू जी।
0: और बीच में एक बार बुखार भी देख लेना। ओफो, मर गए, आज भी देर हो गई। अभी तो शंटू मंटू को तैयार करना है, नहीं तो आया उसके साथ ही कमी रह जाएगी। आया आया, जरा मेरे कलम में स्याही भर देना। ओहो, कहाँ रख दिया?
1: कौन सी बहू जी?
0: अरे भाई, धूप का चश्मा।
1: हाँ,
0: और सब ठीक? और सब ठीक से मेज पर लगा देना, दवा ठीक से दे देना।
1: जी जरूर।
2: राजा भैया, देखो हम क्या लाए हैं, मीठा मीठा शरबत। खोलो तो।
3: सच्ची? देखे, झूठी नहीं तो। हम समझ गए, दवाई है।
2: अच्छा लो, झट से मुंह खोलो। खोलो खोलो। ए आ, फिर बंद कर लिया। खोलो भैया।
3: हम दवाई नहीं पियेंगे।
2: पी लो भैया, नहीं तो देर हो जाएगी।
3: हो जाने दो, हम तो नहीं पियेंगे।
2: अरे रे, मुंह पर से चादर तो हटाओ।
3: तुम पहले दवा हटाओ।
2: अच्छा लो, एक दवा का गिलास यहाँ रख दिया।
3: अब ठीक।
2: लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठकर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे चलोगे?
3: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना।
2: हाँ, उठना नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। ए लो, बस एक घूंट में गट से सारी दवा पी जाओ, फिर ले चलेंगे।
3: बड़ी चैन, दवा तो हम नहीं पियेंगे।
2: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे?
3: हाँ, हम तो नहीं पियेंगे।
2: तब फिर ऐसे नहीं।
3: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पियेंगे, मम्मी से पियेंगे।
2: मम्मी तो दफ्तर गई हैं। पी लो भैया, नहीं तुम्हें बहुत बिगड़ेंगी।
3: तुम्हें डांट पड़ेगी तब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी, परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भरती भरती, भाग जाओ यहाँ से।
2: सच्ची आफत कर मारी है, इतनी देर में कितना काम हो जाता। शंटू मंटू की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
3: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
2: दीदी के इम्तिहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर सा।
3: अच्छा आया, हमें गिलास पकड़ा दो। तुम आंखें बंद करो, हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास।
2: अच्छा,
3: आया।
2: अच्छा लो पकड़ो। ए संभाल के, पकड़ लिया। अच्छा लो, अब जल्दी से पी जाओ। एक दो।
3: नहीं नहीं, तुम पहले आंख तो बंद करो।
2: अच्छा लो, बंद कर लिया। एक दो तीन। ए फेंक दी सारी दवा। ओहो, सारी दवा बेकार गई। जो मन में आए करो।

0: Петя.
1: मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे।
2: क्यों, आज क्या है?
1: आज तुम घर पर रहोगी ना,
2: तो इससे क्या, छुट्टी तो हमारी है ना।
1: बस मम्मी हमारी भी छुट्टी है।
2: नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं, जल्दी से जाओ, आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दे।
1: मम्मी
2: बस जाओ जाओ जाओ, बस जाओ। नहीं गलत बात है, एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी, फिर पिछड़ नहीं जाओगे।
1: नहीं मम्मी आज ना भेजो।
2: जाओ जाओ, राजा बेटे की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शंटू मंटू के लिए झगड़े सिलने हैं, उनकी बिब बनानी है, बहुत काम है, तुम जल्दी से।
1: मम्मी बड़ा मजा आएगा, घर में दिन भर हम तुम खेलेंगे, आज तुम्हें हरा ना दिया तो।
2: भैया फिर वही जिद, फौरन जाओ, आया ले जाओ इसे। ऑफिस से छुट्टी तो दिन भर इनके साथ सर खपाओ, जैसे और कोई काम ही नहीं।
1: आया। चलो हम भी भाग चलें।
3: क्यों भैया, क्या हुआ?
1: मन नहीं लगता।
3: अच्छा चलो शंटू मंटू को खिलाएं थोड़ी देर।
1: नहीं आया, वो दोनों गंदे हैं, पेपे रोते रहते हैं, उनके मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती हैं।
3: तो फिर चलो उठो, लॉन पर गेंद खेले हैं, अब तो कुछ हंसो तो।
4: ए आई हंसी ये आई।
1: नहीं लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
3: तब कहाँ खेलोगे?
1: अनिल के घर चलो ना।
3: रोज रोज अनिल के घर?
1: तो क्या हुआ, उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती हैं।
3: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
1: चलो ना।
3: रुको तो, ओफो धोती छोड़ो भैया, फट जाएगी।
1: तो खड़ी हो फौरन, वन टू।
3: अरे चप्पल तो पहन लेने दो राजा।
1: अच्छा,
3: भैया
1: हम जा रहे हैं, तुम चप्पल पहन के आना, लेकिन जल्दी आना।
3: अजीब लड़का है, बस बात मुंह से निकले और पूरी कर दो। बहू जी आ लेंगी तभी तो जा सकती हूँ। जरा ठहर जाओ राजा भैया, थोड़ी देर में चलेंगे। जब देखो अनिल की यहाँ, बस हो गई घंटों की छुट्टी, एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते, ऊपर से बहू जी नाराज होती है कि तुम शंटू मंटू का काम ठीक से नहीं करती हो। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे, मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा, आओ अब घर चलें।
1: चलेंगे आया, थोड़ा सा और खेलने,
3: फिर कल खेलना।
1: देखो अनिल आया तो समझती हूँ, इतना घर बन गया, जरा सा बचा है पीछे लगी है।
3: शाम हो गई है, गीली मिट्टी से बहुत खेल करोगे तो सर्दी लग जाएगी।
1: तुम पीछे का दरवाजा बनाओ अनिल, ये तो मानती नहीं, ऐसे ही बाबा करेगी।
3: राजा भैया।
1: ओफो आया, मानती क्यों नहीं। अच्छा इधर आओ, आओ ना आओ।
3: यहाँ तो गीला है
1: सिर्फ, जरा सा तो पानी है, डरती हो, आओ ना इधर आओ बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
3: मिट्टी का ढेर है ये तो।
1: हाँ आया तुम इतना भी नहीं समझती हो।
3: तो और क्या है?
1: आया ये मकान है, घर है, समझी?
3: काम फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो, जाओ हम बोलेंगे ही नहीं।
1: मत बोलो, बड़ी आई आया कहीं की, जो हम भी नहीं बोलते तुमसे।
3: बस गुस्सा हो गए। अच्छा बताओ
1: ये है आया, इधर देखो ना, ये है इसकी खिड़की और ये है इसका दरवाजा।
3: और हाय खिड़की दरवाजे में ताला कैसे बंद करोगे, सब तो खुला है।
1: इसमें आया तो ताला छोड़े ही पड़ेगा।
3: तो क्या सब खुला रखोगे?
1: हाँ तभी तो मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा, फिर तो कोई हमें नहीं रोकेगा।
3: इतने से मकान में रहेगा कौन कौन?
1: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे, मम्मी पापा हम
3: और शंटू मंटू।
1: नहीं, नहीं, नहीं, कोई भी नहीं, फिर तो भीड़ हो जाएगी।
3: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
1: तुम्हें तो आया फौरन निकाल देंगे, तुम थोड़े ही रहोगी, और फिर तुम तो इतनी मोटी हो, आओगी कैसे इसमें?
3: झुक कर घुस जाएंगे।
1: झुक घुस जाओगी, लेकिन फिर निकलोगी कैसे, फंस जाओगी? ना भैया ना, तुम तो सारा मकान ही तोड़ दोगी।
3: हमें निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या?
1: हम नहीं जानते आया, तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा, हम मम्मी की गोदी में बैठ कर ठाक से खाएंगे।
3: तो फिर हम रोएंगे।
1: अच्छा रुको रुको, हम मम्मी से कह देंगे तुम घर पर रहना, शंटू मंटू खिलाना, बस अब चुप हो जाओ। अरे भाई कह तो रहे हैं कि तुम्हें रख लेंगे शंटू मंटू के लिए।
3: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
1: नहीं भाई मान जाओ ना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
3: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
1: क्या?

0: स्वर्ग आया? स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें मार डालोगी?
1: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हो क्या होगा?
0: हम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये तो बताओ कि वहाँ खिलौने होंगे कि नहीं?
1: हाँ हाँ होंगे।
0: अरे आया मम्मी से तो पूछ ले, आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
1: हाँ हाँ।
0: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
1: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
0: करती थी आया, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं जाती थी, जब से शंतु मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं, इनके मारे तो।
1: देखो भैया, स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
0: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
1: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
0: मगर आया एक बात तो बताओ, हम ढेर सी मिट्टी जमा कर ले और जो आंगन है ना
1: घर में।
0: अरे हाँ अपना आंगन
1: है तो
0: बस वहीं स्वर्ग बनाएंगे।
1: आंगन में स्वर्ग?
0: हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा यार, चलो हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, लेकिन जब मम्मी मैं गोदी में लेंगी तो तुम अभी से मत आना।
2: अरे तुम अभी सोए नहीं
1: भैया?
2: अरे हमसे बोलोगे नहीं, क्या हुआ?
1: अरे अरे इतना गुस्सा,
2: अरे मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
0: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
2: नहीं नहीं रोते नहीं बेटे, क्या बात है, क्या बात है बेटे, आज तुम इतनी देर तक सोए क्यों?
0: मम्मी बताए।
2: हाँ हाँ
0: यहाँ बैठो मम्मी और पास।
2: हाँ,
0: मेरे पास आओ ना।
2: हाँ, ले लो हमारे पास।
0: अब बताए।
2: हाँ।
0: मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
2: अब तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, कल बढ़िया सी कहानी सुनाओ।
0: नहीं आज ही, अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना कर जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है। मम्मी वो वाली सुना दो ना।
2: कौन सी बेटा?
0: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी, जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी, जब मम्मी आया नहीं थी, वही वाली।
2: वो तो बहुत लंबी है, इसमें तो याद भी नहीं।
0: याद है याद है, सुनाओगे नहीं तो फिर हम भी नहीं सोएंगे, सुना दो मम्मी।
2: अच्छा जल्दी से देखो, तो आंखें मूंदो।
0: ये लो।
2: एक थी सोन परी, एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में। महल के आंगन में
0: स्वर्ग था।
2: अरे तुम्हें तो इतना याद है
0: मम्मी, आज हमने आया के साथ पक्का कर लिया है कि हम भी आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। अरे मम्मी तुम तो रो रही हो। अच्छा तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे मम्मी, रो नहीं, हम नहीं बनाएंगे स्वर्ग, बस अब तो चुप हो जाओ मम्मी।
2: नहीं नहीं बेटे, मैं रो थोड़े रही थी, वो तो आंख पे कुछ चला गया था। हम जरूर आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। हाँ तो सोन परी जब महल में पहुंची तो वहां पर सबसे आगे एक बढ़िया सा भैया

आंगन में स्वर्ग। अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका, लेखन और निर्देशन किया दुर्गा मेहरोत्रा ने। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे स्टूडियो से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रोग्राम गीत गुंजन में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस प्यारे से गाने से, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और कुमार सानू ने। फिल्म का नाम है बलमा और इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

और आइए प्रोग्राम में सुनते हैं प्रोग्राम का ये दूसरा गाना फिल्म सनम रे से। मिथुन अरिजीत सिंह अनिरुद्ध भोला की आवाजें हैं और गीत संगीत मिथुन का है। सुनिए गर्मी के इस मौसम में सर्दी का एहसास कराता हुआ

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: Hello.
2: No. Telephone number.
3: My number is
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: जी श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गीत गुंजन में। और अगला गाना हमने लिया है फिल्म साथी से, अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज है। समीर ने लिखा है गाने को, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: यूपी वाला ठुमका।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये अगला गाना आ गया है यूपी वाला ठुमका लगाने। आवाज है सोनू निगम की, समीर का लिखा हुआ गीत, एक बार फिर से आनंद मिलिंद का संगीत है, फिल्म का नाम हीरो नंबर 1।

भाई इस यूपी वाले ठुमके के बाद आइए सुनते हैं एक और रोमांटिक नंबर। अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के युगल स्वर में होगा ये गाना बादशाह फिल्म से। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं आपको बताते चलें कि रात 9:15 पर हम लेकर आएंगे महफिले गजल, और 9:30 का वक्त तो आपको पता ही है, 9:30 से लेकर पूरे 1 घंटे यानी 10:30 तक होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो आपके दोस्त को रहेगा इंतजार आपकी दिलचस्प बातों का, आपकी पसंद की फरमाइशों का। तो प्रोग्राम को सजाइएगा 9:30 से हेलो अयोध्या में।

0: श्रोताओं, इस उम्मीद के साथ कि आज के ये चंद गीत गीत गुंजन में आपको जरूर पसंद आए होंगे, अपने रेडियो दोस्त सदक को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से FM 101.9 MHz पर। आइए चलते हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से हम सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र

0: कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998

0: पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
1: In 2014,
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: अप टू 23,622 करोड़।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, Central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said 1,000 years ago, the first of many

0: 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब पेश है महफिल गजल।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: प्रोग्राम महफिल गजल में आप सभी का इस्तकबाल है। पहली गजल आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। कलाम है मजरूह का और संगीतकार हैं जगजीत सिंह।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
2: कार्यक्रम महफिल गजल में आपका फिर से स्वागत है। अगली गजल आइए सुनते हैं, मिताली सिंह की आवाज में, फिल्म एल्बम आरजू से।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे महफिल गजल एफ एम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है।

0: रात के 9:30 में है। पेश है आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
0: प्यारे श्रोताओं, आपका दोस्त सदक लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो अयोध्या। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी जुड़िए 7376 80 40 90 नंबर को डायल करके। जी हाँ, 7376804090 नंबर डायल करना है अपनी दिलचस्प बातों के साथ, अपनी पसंद की गीत के साथ, जिसमें फिल्म का नाम भी आपको पता हो, कौन से फिल्म का गाना आप सुनेंगे इसके साथ जुड़िए। और एक घंटे तक ये पूरा प्रोग्राम चलना है, आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कभी नहीं जुड़े हैं तो आज ज़रूर जुड़ें। जो श्रोता हमें कुछ दिन पहले कॉल किए हों, 10 दिन 2 हफ्ते पहले, वो कोशिश करें कि कॉल वो फ़ोन ना लगाएं ताकि नए श्रोताओं को मौका मिल सके। आइए देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन जुड़ रहे हैं। हेलो
2: जी। हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: जी नमस्कार, मैं जिला अयोध्या से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद राजिक है।
0: मोहम्मद राजिक भाई, कहाँ से, अयोध्या में कहाँ से फोन लगाया आपने?
2: बछड़ा सुल्तानपुर से।
0: बछड़ा सुल्तानपुर से, ओके। किस फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं आज आप?
2: जी गाने के बोल हैं, मुबारक हो तुम सबको आज का महीना,
0: फिल्म,
2: आज के मौके
0: फिल्म का नाम बताइए।
2: फिल्म का नाम है कुली।
0: कुली
2: बोल से भी निकल आता है सर।
0: हाँ, कुली फिल्म का गाना है ये, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, मुबारक हो तुम सबको। तो आपके घर में कोई हज पे जा रहा है क्या राजिक भाई?
2: जी नहीं,
0: नहीं मैंने कहा कि आपने गाना खास तौर पे सुना तो शायद कोई जा रहा हो, इसलिए मैंने पूछा। क्या करते हैं आप?
2: जी हमारे यहाँ फूल का कारोबार है, डेकोरेशन का काम होता है।
0: अच्छा, फूल डेकोरेशन
2: का। हम ब्लाइंड पर्सन हैं, सब कुछ कर लेते हैं घर का काम।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। चलिए तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पहला फोन आपका लगा। इससे पहले कब जुड़े थे आप इस प्रोग्राम में?
2: जी सर, इससे पहले हम 1 महीना पहले जुड़े थे।
0: चलिए बहुत अच्छा, हम बाकी श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि अगर वो 1 महीने का गैप करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नए श्रोता जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नए श्रोताओं को भी मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का गाना सुनिए राजिक भाई।

0: भाई कार्यक्रम चल रहा है। हेलो अयोध्या, आप डायल कर रहे हैं 73-76-80-40-90 हमारे अगले श्रोता आएंगे लाइन पर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? रमेश निषाद जी, दिलासीगंज बाजार। बड़ी धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, जैसे कहीं आप सो रहे हो, नींद में हो, थोड़ा जागृत हो जाइए। आपका फोन, हाँ आपका फोन आकाशवाणी में लग चुका है, तो थोड़ा चहक कर आइए ना भाई। हाँ आवाज आपकी ठीक जा रही है, बस आप जैसा लग रहा है ना चुपके से बात कर रहे हैं किसी से, कि कोई सुन ना ले आपकी बात।
1: आवाज धीमी जा रही होगी।
0: अच्छा कोई बात नहीं, तो नील कमल फिल्म का गाना आपने फरमाइश किया है, अच्छी बात है, वो हमने लगा रखा आपके लिए। क्या करते हैं सर आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो खेत में इस समय क्या लग रखा है आपके, जान सकता हूँ?
1: मौके पे चरी सब्जी लगी।
0: सब्जी कौन सी लगी है?
1: नेनुआ नेनुआ तरोई।
0: अच्छा यहाँ आपने यहाँ जो नेनुआ और तुरई शब्द है, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? तुरई अलग है, अलग है। तो शहर में तो जैसे हम लोग शहर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो नेनुआ को भी तुरई ही बोलते हैं लोग, है ना?
1: नहीं, तरोई अलग है, नेनुआ अलग।
0: कैसे बताइए, कैसे हमारे श्रोताओं को बताएंगे नेनुआ तरोई में क्या अंतर है?
1: उसमें चीना चीना पड़ा रहता है।
0: किसमें? तरोई में? हाँ तरोई में चीना चीना पड़ा,
1: एकदम सादा रहता है,
0: गोल रहेगा ना, और वो थोड़ा सा धसा धसा
1: दोनों होगी।
0: हाँ
1: हाँ, खाली उसमें एकदम चिकन रहेगा, उसमें थोड़ा चीना रहेगा।
0: चिनवा तो हमें लगता है दोनों में रहता है, लेकिन तुरैया में थोड़ा गड्ढा गड्ढा,
1: थोड़ा मोटा रहेगा।
0: हाँ मोटापन लिए रहेगा, और चिनवा पता चलेगा छूने से, है ना? सही कहा,
1: मोटा चीना रहेगा।
0: हाँ मोटा चीना रहेगा, हाथ में छूने से मालूम चलेगा वो, और ननुआ में नहीं पता चलेगा, ननुआ में चिकन है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इधर के लोग नहीं जानते, शहर में तो सब लोग ने उसको तुरैया तुरैया सबको बोलते हैं।
1: हाँ वही पर वही जानते हैं, देहात है ना,
0: देहात में दोनों अलग अलग है। तो ये बताओ क्या नाम, दाम दोनों का कैसा मिलता है? जैसे आप लोग जब बेचते हैं अपने खेत से, तो दाम ज्यादा किसका कम ज्यादा मिलता है, कि दोनों एक ही रेट बिकता है?
1: वही रहे 10-5 रुपए इधर उधर हो जाए, नहीं तो रात।
0: कौन ज्यादा रात है? ज्यादा कौन एक मिलत नेनुआ की तुरोई का?
1: तुरोई नेनुआ दोनों बराबर बिकता है।
0: अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बड़ा मजा आया रमेश जी, और जानकारी हमको मिली, बहुत शुक्रिया।
1: हाँ सुना था, पढ़ाते भी है।
0: चलिए बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाते हैं, जी जी जी ठीक है रमेश भाई। अच्छा बहुत अच्छी बात है, रमेश जी लीजिए आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, शुक्रिया।

0: भाई हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे लाइन पर। हेलो,
1: मेरा नाम उषा दुबे है।
0: उषा दुबे जी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रोटी कपड़ा और मकान का गाना आप सुनना चाह रही हैं, तो इसमें कौन सा गाना रहेगा ये बताइए हमको। हेलो उषा जी, उषा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है ये हमारी आवाज नहीं सुन पा रही हैं किन्हीं कारणों से। हेलो,
1: कैसे हैं?
0: आवाज सुन पा रही हैं? रोटी कपड़ा और मकान में कौन सा गाना रहेगा? आप नेटवर्क में हमें लगता नहीं है उषा जी। जब भी हमारे श्रोता कोई भी डायल करें तो कृपया अच्छे नेटवर्क में आकर ही डायल करें। हाय हाय, ये मजबूरी में लगा दे रहा हूं, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं।
1: यही
0: सुनना है। चलिए तो और कौन कौन सुन रहा है आपके साथ ये प्रोग्राम उषा जी?
1: जी मेरी बेटी है और मैं।
0: बेटी और आप दोनों लोग सुन रहे हैं ना? चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: ठीक है, नमस्ते सर।

0: भाई हाय हाय, ये मजबूरी के बीच हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे। हेलो।
1: हाँ
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाए हैं बताइए सर।
1: हम लगाए हैं डागर खाना बड़ोखा।
0: अच्छा बहुत स्वागत है, अपना नाम भी बता दीजिए सर।
1: धीरज यादव।
0: धीरज यादव जी, तो आपने दिलवाले फिल्म का गाना सुनना चाहा, इसमें गाना कौन सा सुनेंगे?
1: वही दिलवाले गाना।
0: दिलवाले जीता था जिसके लिए?

0: बहुत बढ़िया, हमने लगा दिया है। क्या करते हैं आप यादव जी?
1: बोरिंग करते हैं।
0: हाँ, बोरिंग।
1: अच्छा।
0: जी जी, चलिए तो आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनिए, अच्छा ड्राइवर है।

0: श्रोताओं हमसे जुड़े मनीष श्रीवास्तव जी अयोध्या से, जिन्होंने सुनना चाहा था, कल मदर्स डे था और बड़ा प्यारा गाना उन्होंने फरमाइश किया तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, लेकिन वो लाइन पर नहीं रह पाए और अब इस वक्त हमारे साथ संजय गुप्ता जी सोहल के पास से जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है।

0: जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सर, अपना नाम फिर से बता दें और कहाँ से बोल रहे हैं, गाँव सहित बताइए अपना जगह।
1: हमारा नाम संजय गुप्ता, हम लारापुर सोहावल के पास है सर।
0: लारापुर सोहावल के पास है। जी जी जी, बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो गाना था उसी को ही पसंद किया, ओ माँ वाला गाना। तो क्या करते हैं आप संजय जी?
1: जी हम हाउस वाइफ हैं।
0: हाउस वाइफ है। संध्या नाम है आपका?
1: जी हाँ, संध्या।
0: संध्या जी बोल रही, सॉरी मुझे सुनने में थोड़ा सा गलती हुई।
1: संध्या नहीं, संज्ञा है सर।
0: संज्ञा, अच्छा संज्ञा नाम है। संज्ञा मतलब नाउन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वही।
1: हाँ जी वही।
0: अरे वाह, चलिए तो आपका नाम ही संज्ञा है, तो आपके जितने भी नाम होते हैं उनको संज्ञा ही कहा जाता है कि नहीं? तो अगर मैंने संजय भी कहा तो संज्ञा ही कह दिया।
1: कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हमारा नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो संज्ञा ही कहते हैं, लेकिन जब रियल वाला बताते हैं तो समझ में आता है।
0: मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नाम संज्ञा है तो जितने भी नाम आपको कहे जाए सब आप ही के है ना, क्योंकि संज्ञा माने नाम होता है कि नहीं? तो कोई कुछ भी बोले आप ही का नाम है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं आप, घर में रहती हैं?
1: जी हाँ, घर पर रहते हैं, घर के काम में सिलाई करती हूँ।
0: सिलाई भी कर लेती हैं, वेरी गुड। तो
1: जी हाँ।
0: और कौन कौन सुन रहा है आपके साथ ये प्रोग्राम? हेलो विद्या
1: जी, हमारे घर के कोई सदस्य, हमारे पति भी अभी तो कभी लेट गए हैं, हम तो छत पर हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस समय हमारे पति हैं, हमारे तो बच्चे भी सो गए हैं।
0: हाँ, मतलब आप पति पत्नी इसको सुनेंगे तो गाना तो बहुत अच्छा है, बच्चे सो गए लेकिन माँ के ऊपर गाना, आप अपनी मम्मी को डेडिकेट करके इसको सुनिए। कल मदर्स डे था, मातृ दिवस था, तो उस पर ये गाना अच्छा है, हमारे श्रोता की भी पसंद पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है संज्ञा जी, फिर फोन कीजिएगा, हम आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।
1: ठीक है, नमस्ते सर, गुड नाइट।
0: गुड नाइट।

0: भाई इतना प्यारा गाना है ये माँ पर कि इसे काटने का दिल बिल्कुल नहीं करता, बीच में रोकने का मन नहीं करता, फिर भी हमारे श्रोता हैं, इनसे बात करेंगे हम। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम मंगला काचन पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपकी बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह जी कासगंज जिले से हमसे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कौन सी फिल्म का गाना सुन रहे हैं आज?
1: राजा फिल्म से।
0: कौन सा गीत?
1: फूल मांगू ना बहार मांगू।
0: हाँ, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। क्या बात है
1: जी।
0: तो क्या करते हैं आप रूप सिंह जी?
1: खेती बाड़ी करता हूँ।
0: अरे वाह, हमारे साथ।

0: किसान श्रोता ढेर सारे जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से हमें बात करके। तो अभी हम एक कृषक श्रोता से बात कर रहे थे अयोध्या से, है ना, तुरई के बारे में बता रहे थे हमको। आपके खेत में क्या लगा हुआ है?
1: मूंगफली है और मक्का है।
0: मूंगफली और मक्का, वाह, दोनों ही बड़े अच्छे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं और बड़े पौष्टिक होते हैं, है कि नहीं? मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और मक्का भी बहुत अच्छा कार्ब्स है और आसानी से पचने वाला और पेट के लिए अच्छा। तो कितना समय लगता है इन फसलों को तैयार होने में और क्या सीजन होता है इनका?
1: लगभग 3.5 महीने या 4 महीने लग जाते हैं।
0: किसको पकने में? मक्के को?
1: मक्का और मूंगफली
0: दोनों को लगभग 3 से 4 महीने, 3.5 से 4 महीने लगते हैं। चलिए, तो दोनों साथ साथ बोई जाती है कि अलग अलग टाइम पे? क्या महीना होता है इनका बोने का?
1: तो फरवरी में दोनों ही आइटम बोई जाते हैं, मक्का भी बोई जाती है और मूंगफली भी, लेकिन मक्का अभी भी पई जा रही है।
0: अच्छा अच्छा, और तो कब? और ये
1: मई तक पई जाएगी,
0: मई के एंड तक ये मिल जाएगी आपको तैयार, है ना? चलिए बहुत अच्छा। चलिए रूप सिंह जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, जानकारी भी मिली हमको, बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का गाना हम पहुंचाते हैं, ठीक है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: भाई हमारे अगले श्रोता मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,

0: हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोक गीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो।
4: हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बताएं।
4: मैं अनिल यादव बात कर रहा हूँ, ग्राम डोड़े खेड़ा, तहसील बंदी और जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।
3: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अनिल यादव जी जुड़ गए हैं।
4: जी, जी।
3: बहुत स्वागत है आपका। आप किस फिल्म का गाना सुनेंगे?
4: राजा हिंदुस्तानी का सुनवादी, परदेसी जाना नहीं।
3: परदेसी जाना नहीं, वाह भाई।
4: जी सर,
3: ये तो बहुत ही प्यारी फिल्म और इसके सभी गाने बहुत पसंद है मुझे भी, और ये भी गाना बहुत ही अच्छा है। तो
4: मेरी आकाशवाणी पास में छतरपुर करता है, छतरपुर।
3: जी जी, आपके पास में ना। क्या करते हैं अनिल जी आप?
4: वैसे तो मैं किराना दुकान रखे हैं और खेती किसानी भी कर।
3: अच्छा, दोनों काम कर लेते हैं। तो ये बताइए, किराने के दुकान पर तो काफी वक्त देना पड़ता होगा, तो कोई और भी बैठ जाता है क्या आपके अलावा?
4: जी जी,
3: क्योंकि घर में और लोग सहयोग करते होंगे, क्योंकि आप पशुपालन भी कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, किराना भी कर रहे हैं, तो कई लोग मिलकर ये सारा काम करते होंगे, है कि नहीं? तो पशुओं में कौन से पशु आपने पाल रखे हैं सर? अनिल जी,
4: मुर्रा भैंसे रखे हैं सर।
3: मुर्रा भैंसे हैं आपके पास, कितनी हैं?
4: कम से कम
3: 10 भैंसे हैं। तो पूरी डेयरी चलाते हैं इसका मतलब आप? अच्छा खासा ना,
4: डेयरी भी चलाते हैं।
3: तो परिवार भी आपका बड़ा होगा, ढेर सारे लोग होंगे उसमें, कितने लोग हैं परिवार में?
4: ब्लॉक है तो सब शामिल, बड़ा परिवार है, 5-6 भैया है, तो अलग अलग
3: जी जी
4: करते
3: हैं। हाँ बिल्कुल, तभी ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी। चलिए अनिल जी, इससे पहले आप इस प्रोग्राम से जुड़ते रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से भी?
4: जी, 3 साल फोन लगा है मेरा।
3: अरे वाह, चलिए तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर फोन करते रहिए, जैसे आज आपने किया काफी अंतराल के बाद, ऐसे ही फोन करिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी पसंद का गाना जा रहा, सुनिए। ठीक है, नमस्कार।

0: और आइए हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाया आपने।
1: मैं करण बोल रहा हूँ, रोहतांग अयोध्या।
0: करण जी अयोध्या से बोल रहे हैं, खंडासा की तरफ से, है ना। अयोध्या के सबसे दूरस्थ जो ब्लॉक है वहां से बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, जहाँ आप रहते हैं वो गांव होगा, जाहिर सी बात है ना। हमने कहा गांव में रहते हैं ना आप। आपकी आवाज कट कट के आ रही, नेटवर्क में थोड़ा आइए कहीं, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। हमने कहा, हमने सुना है कि खंडासा के तरफ जंगल भी हैं कुछ, वहां जंगली जानवर भी कभी कभी दिखते हैं, ऐसा है क्या। हेलो, तो आपके गांव की तरफ जंगल है क्या। थोड़ी दूर पर है। चलिए, आपकी आवाज मुझे कट कट के मिल रही है, तो आपकी पसंद का गाना जो आपने बोला है अश की फिल्म का, वो हम सुनाते हैं, ठीक है। करण जी सुनिए, ठीक से बात नहीं हो पा रही आपसे, मुझे आपका आवाज ठीक नहीं मिल रही है। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, आपकी पसंद का गाना जा रहा है।

0: वो हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है जो हमारे प्रोग्राम में साथ रहते हैं। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाया है?
1: लोकेश तिवारी, बीकापुर से।
0: लोकेश तिवारी जी हमारे नियमित श्रोता बीकापुर से जुड़ गए हैं। कौन सी फिल्म का गाना सुना रहे हैं आज सबको आप?
1: तहलका।
0: अरे वाह, तहलका मचाएंगे। तहलका में कौन सा गाना सुनेंगे?
1: दिल दीवाने का डोला।
0: क्या बात है अनुराधा पौडवाल एक बार फिर से आएंगे। हाँ
1: हेलो सर जी।
0: जी मैं सुन रहा हूँ।
1: गए थे घूम टहर के आए थे
0: आकाशवाणी।
1: जी जी हाँ, वो सुनील यादव मिले थे सर।
0: अच्छा अच्छा, गार्ड साहब, चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आकाशवाणी घूमकर आपको तिवारी जी?
1: बढ़िया, फिर कूलर वाला बना रहे थे जो भैया बैठे थे वो मुझे।
0: जी जी जी,
1: यहाँ तो घुमाए कहीं बहुत दूर से, आज मैं घुमा दे रहा हूँ।
0: तो स्टूडियो के अंदर भी देखा, कहाँ से हम लोग प्रोग्राम करते हैं ये भी देखा आपने?
1: जी जी जी, दिखाए चार पांच कमरा दिखाए सर, उसके बाद एसी वाला पूरा प्लांट दिखाए वो इन्होंने।
0: स्टूडियोज भी आपने देखा और एसी प्लांट भी देखा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लोकेश जी क्या करते हैं आप?
1: चलिए खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, तो मैं नहीं पूछूंगा खेती बाड़ी के अलावा और क्या करते हैं
1: सर जी? और कुछ नहीं।
0: और कुछ नहीं करते? क्या उम्र है आपकी जान सकता हूँ मैं?
1: 25।
0: अच्छा 25 साल है, तो पढ़ाई वगैरह भी किए होंगे?
1: पढ़ाई हाई स्कूल।
0: हाई स्कूल, और उसके बाद खेती पर जुट गए हैं पूरी तरह से हैं?
1: सर जी 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं।
0: हाँ अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
1: सितंबर में
0: बता रहे। लोकेश जी आपको ज्यादा जानकारी है चीजों के बारे में, हमें कम जानकारी है। ठीक है,
1: हम तो
0: गाना सुनाइए पूरा। जी बिल्कुल सुना रहे हैं, चलिए सुनिए फिर। शुक्रिया, नमस्ते।

0: भाई हमारे श्रोता ने रिक्वेस्ट की थी कि गाना पूरा सुनाया जाए, लेकिन ये गाना 7.5 मिनट का है। अगर हम 7.5 मिनट के गाने सुनाएंगे तो मुश्किल से हम 5-7 लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल कर पाएंगे, तो माफी चाहते हैं आपसे। एक छोटा सा अंतराल लेंगे और अंतराल के बाद अगले श्रोता से हम जुड़ेंगे।
1: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
2: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
2: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
4: अपने वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
5: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
4: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
5: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
4: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
5: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
4: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
0: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है, आइए जुड़ते हैं हम अपने अगले श्रोता से। हेलो,
6: नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं और कहां से फोन लगाया आपने, बताइए।
6: जी सर, जी हम संतराम बोल रहे हैं, जो ये उनका पैकेज पास जो जयनगर से।
0: जी जी, समझ गया मैं। तो उस जगह नाम भी होगा ना, उस जगह का क्या बोलते हैं उस जगह को?
6: अरे वो सर जी, वो स्कूल है उसके गाँव हासापुर है।
0: हासापुर, तो आप हासापुर बता सकते हैं? हासापुर, जी
6: हाँ जी जी सर।
0: तो हासापुर से आपने फोन लगा दिया, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा गाना सुन रहे हैं आज आप? दलाल फिल्म का कहा था आपने, दलाल फिल्म में कौन सा गाना रहेगा?
6: वो जो सर जी वो गाना जो बताए थे,
0: मेरा राम जी।
6: इस संसार के हर पाते कर दो सुसंहार, मेरा राम जी।
0: वाह, ये तो बड़ा अच्छा गीत है, शुरू में आना चाहिए था। चलिए, तो क्या करते हैं आप संतराम भाई?
6: सर जी

0: हमें यही सर जी, हम वो तभी भी बेचते हैं जो है।
1: अरे बहुत अच्छी बात, तो इतना संकोच करके क्यों बता रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, हरी हरी हरी सब्जियां बांट रहे हैं, बड़ा आनंद आता है सब्जी तो खरीदने में खाने में भाई।
0: ठीक सब्जी
1: तो ये बताइए कि आजकल आजकल किस सब्जी की डिमांड ज्यादा है आपकी दुकान पर?
0: सब्जी कद्दू सबसे सस्ती सब्जी है, उसके बाद जो है वो आ गया परवल महंगा जो है,
1: तो
0: उसके बाद जो टमाटर जो है
1: जी
0: वो सस्ता है जो है।
1: टमाटर और कद्दू सस्ता है इस समय, क्या रेट चल रहा है?
0: धनिया सब्जी बहुत महंगी है जो है।
1: जी जी जी, तो कद्दू और टमाटर का क्या रेट चल रहा है, मैं जान सकता हूँ?
0: सब्जी कद्दू का रेट 20 रुपए चल रहा है, बाकी टमाटर का जो 10 रुपए 20 रुपए जैसे हम लोग छोटा बड़ा हो जो है।
1: अरे भाई तो बड़ा ही सस्ता है भाई इसको तो कद्दू, और कद्दू अच्छी सब्जी भी है खाने लायक, बढ़िया है कि नहीं? चलिए बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा हमको, आपकी पसंद का हम गाना पहुंचा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार
0: पूरी टीम को, आपको नमस्कार सर जी,
1: नमस्कार भैया।

0: भाई आकाशवाणी अयोध्या के इस स्टेशन पर मेरे राम जी भगवान जी वाला गाना बज गया और धन्य हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे इन श्रोता को जिन्होंने इस गाने को चुना, और सभी श्रोताओं को शुक्रिया जो इतने प्यारे प्यारे गीतों के साथ हाजिर होते हैं। और हमारे प्रोग्राम के इस आखिरी श्रोता से हम जुड़ेंगे, 12वें श्रोता से जुड़ेंगे, इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से आपने फोन लगाया।
1: सर नमस्कार, ये मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शंकर कुमार हो गया।
0: शंकर कुमार जी का बहुत स्वागत है, सीतामढ़ी से जुड़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। किस फिल्म का गाना सुन रहे हैं आज आप, कौन सा गाना?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम सर गाना सुनेंगे।
0: हाँ, एक दूजे फिल्म के लिए का ये गीत है, लता जी की आवाज में अनूप जलोटा के साथ। तो क्या करते हैं आप शंकर जी?
1: सर यहाँ मतलब जो गार्जियन के साथ रहते हैं, बिजनेस है अपना
0: एक। अच्छा, एक बिजनेस है आपका? और
1: जी छोटा मोटा।
0: बढ़िया है, छोटा मोटा क्या मालिक तो है बिजनेस अपने, है कि नहीं? तो और क्या शौक रखते हैं बिजनेस के अलावा?
1: नहीं सर, सिर्फ बिजनेस करते और घूमते फिरते रहते हैं।
0: ये बड़ा अच्छा काम है।

0: घूमते फिरते रहते हैं, तो कितनी जगहों पर घूम चुके होंगे अभी तक आप?
1: सर बहुत जगह घूमे हुए हैं सर।
0: तब भी 50 100
1: कलकत्ता घूमे हुए, लगभग दिल्ली घूमे हुए, आपका बनारस घूमे हुए, इलाहाबाद घूमे हुए सर।
0: बहुत बढ़िया, चलिए
1: सर। वो क्या कहते भीमा शंकर गए हैं।
0: ये बहुत अच्छा काम आप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर घूमते हैं, और घूमने से बड़े ही मन भी खुश रहता है और बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, कि नहीं?
1: जी सर।
0: चलिए तो आपकी पसंद का गाना पहुंचाते हैं, 4 मिनट बचा है इस प्रोग्राम में, तो 4 मिनट आपका गीत सुन लेंगे हम लोग, ठीक है? फिर हमें फोन करिएगा शंकर जी। बहुत शुक्रिया आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ने के लिए।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।
0: नमस्कार, थैंक यू।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ समाप्त हो रहा हमारा आज का ये सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम को अब तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अरविंद कुमार जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। अब अपने दोस्त सदक हुसैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा

0: में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।